0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রে বা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাঁদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। এখন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বৈষ্ণবী। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास

0: मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. The government has imposed a limit of 100 kg on gold imports under the Advance Authorization Scheme, which allows jewellery exporters to import raw or input materials at zero duty. In a public notice, the Directorate General of Foreign Trade said, advance authorization for import of gold shall be issued subject to a maximal remissible quantity of 100 kilograms. The Directorate General added that any subsequent advance authorization for the import of gold shall be considered for issuance only upon fulfillment of at least 50% of the export obligation. Earlier, there was no limit on gold imports under the scheme. European Union has included India in the revised draft list for continued export of aquaculture products to the EU market. Ministry of Commerce and Industry said that the earlier regulation had not included India among third countries authorized to export products of animal origin intended for human consumption to the EU from September 2026. The revised draft list follows compliance

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि के चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

0: অতুল প্রসাদের গান শুনলেন ঈশিকা ঘোষের কণ্ঠে। আকাশবাণী কলকাতা, সঞ্চয়িতা। এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে সংস্কৃত, হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ।
1: এম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রূয়ন্তাম প্রবাচক ডক্টর গণেশ হেগড়ে। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्यारभ्य यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, इटली देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्णमञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तं असंस्कृततैलस्य, एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल इन्धनस्य, प्राकृतिक अनिलेन्धनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभाविपदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम् प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवपदासीना सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगि एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल इन्धनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः परीक्षां कर्तुं समीक्षां कर्तुं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया, कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीसत्यसाईमण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षापरियोजनानाम् आधारशिलास्थापनकार्यक्रमे भागं गृहीष्यति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमानविकाससंस्थायाः विमानसमायोजनस्य, उड्डयनपरीक्षणकेन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति।

0: विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नत मध्यम युद्ध विमान कार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं ग्रहीष्यति। उत्तर प्रदेशे विगत 37 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिस्सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः, 200+ जनाः वृणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5,00,000 टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे।

कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना

विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस

0: 74 पैसे और डीजल 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 77 पैसे और डीजल का मूल्य 95 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला

0: 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्र संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 9:10 का और इसी के साथ मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर कार्यक्रम रसधारा। दोस्तों, कुछ रिश्ते जन्म के साथ मिलते हैं और वही रिश्ते पूरी जिंदगी हमें जीना सिखाते हैं। तो आज के इस खास महफिल में बात होगी उस दुनिया की जहां हम सबसे पहले मुस्कुराना सीखते हैं, सबसे पहले रोते हैं, सबसे पहले सपने देखते हैं। जी हाँ, आज का विषय है मेरा परिवार। एक ऐसा शब्द जिसे बोलते ही जैसे दिल थोड़ा नरम हो जाता है, आंखों के सामने कई चेहरे घूमने लगते हैं। माँ की आवाज, पापा की परछाई, भाई बहनों की लड़ाइयाँ, दादी की कहानियां और रसोई से आती खुशबू जो सिर्फ खाने की नहीं अपने पन की भी होती है।

ये कार्यक्रम है वो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उन यादों की यात्रा है जिन्हें हम कभी पीछे छोड़ तो देते हैं लेकिन भूल कभी नहीं पाते। एक समय था जब घर बड़े नहीं होते थे लेकिन दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। लेकिन एक कमरे में पूरा परिवार सो जाता था और किसी को शिकायत तक नहीं होती थी। गर्मियों में छत पर बिस्तर लगते थे, दादी हाथ से पंखा झलती थी, दूर कहीं रेडियो बज रहा होता था और आसमान में चांद देखते देखते नींद आ जाती थी। तब जिंदगी इतनी महंगी नहीं थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। न मोबाइल था न सोशल मीडिया, लेकिन रिश्तों में ऑनलाइन रहने की जरूरत भी कभी नहीं पड़ती।

माँ परिवार की वो धड़कन जो कभी रुकती नहीं, सुबह सबसे पहले उठने वाली और रात में सबसे आखिर में सोने वाली। बचपन में जब स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो माँ सिर सहलाकर कहती थी, बस आज चले जाओ, शाम को तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। और सच कहिए, दुनिया के सबसे स्वादिष्ट खाना वही होता था। माँ सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो घर में प्यार पकाती। कई बार हम बड़े

खाना खा लेना, देर मत करना, अपना ध्यान रखना, इन छोटे छोटे वाक्यों में पूरी दुनिया का प्यार छिपा होता है। और पिता, पिता घर की वो दीवार जो खुद धूप में खड़ी रहती है ताकि परिवार पर छांव बनी रहे। बचपन में हमें लगता था कि पापा बहुत सख्त हैं, वो हर बात पर टोकते हैं, डांट

ते हैं, रोकते हैं, लेकिन उम्र के साथ समझ आता है कि उनकी हर डांट के पीछे डर था कि कहीं उनके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। पिता शायद सबसे कम बोलते थे लेकिन सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। उनकी जेब भले खाली हो लेकिन बच्चों की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, बस यही सोचते हैं। कई पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने सपनों को रोक कर जीते हैं ताकि उनके बच्चे अपने सपने पूरे कर सकें।

भाई बहन भी दोस्तों शायद दुनिया के सबसे अजीब रिश्ता होता है। दिन भर लड़ेंगे, रिमोट के लिए झगड़ेंगे, एक दूसरे की चीजें छुपाएंगे, लेकिन बाहर कोई कुछ कह दे तो सबसे पहले वही साथ खड़े मिलेंगे। राखी का त्योहार हो या भाई दूज, इन रिश्तों में हमेशा थोड़ा बचपना बचा रहता है और यही बचपना जिंदगी को बहुत बहुत खूबसूरत बनाए रखता है। आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 17/6/2026 के पूर्वाहन 11:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 136वीं डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संपूर्ण ब्यौरा जैसे कि संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकरणों से पूर्व में प्राप्त पात्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक, डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in अथवा adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 1/6/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत में उपस्थित रहो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0331-221-50, 0332-221-2060 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत के आवेदन पर डाक अदालत शब्द लिखना होना जरूरी है। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकारी आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। इस सूचना के बाद चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गाना।

अब परिवार के बुजुर्ग सदस्य दादा दादी नाना नानी घर की सबसे प्यारी लाइब्रेरी होते हैं। उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन हर परेशानी के लिए सुकून जरूर होता है। उनकी कहानियां, उनकी पुरानी बातें, उनकी धीमी आवाज आज भी याद आती है। उनके साथ बिताया हुआ समय कभी भी बेकार नहीं जाता, वो हमारे भीतर संस्कार बनकर रह जाता है।

दोस्तों, त्योहारों की असली रौनक भी परिवार से होती है। दिवाली की सफाई, होली की शरारती, ईद की मिठास, दुर्गा पूजा की चहल पहल। याद है वो दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर मिठाइयां बनाता था, जब घर में मेहमान आते थे और बच्चे खुशी से उछल पड़ते थे। आज सब कुछ थोड़ा बदल गया है। त्योहार अब सोशल मीडिया की स्टोरीज में ज्यादा देखता है, बैठकों में कम। लेकिन दिल आज भी वो पुराना अपनापन ढूंढता है। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागने लगती है कि हम अपने ही लोगों से दूर हो जाते हैं। एक ही घर में रहते हुए लोग अलग अलग कमरों में कैद हो जाते हैं। पहले लोग रात में छत पर बैठकर बातें करते, अब सब अपने अपने फोन में व्यस्त रहते। पहले कैसा दिन था पूछा जाता, अब सिर्फ फोन चार्जर कहाँ है सुनाई देता है। लेकिन सच यही है कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत अपने रिश्तों की होती है।

0: दोस्तों, जब हम घर से दूर जाते हैं तब समझ आता है कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, वो हमारी पहचान थी। हॉस्टल का कमरा कितना भी अच्छा हो, उसमें माँ के हाथों जैसी खुशबू नहीं होती। बाहर का खाना कितना भी महंगा हो, दाल चावल जैसी तसल्ली नहीं देती। और दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, दिल आखिर में उस घर को ही याद करता है। परिवार हमेशा परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो रिश्ते टूटते भी नहीं, वापस जुड़ जाते हैं। हर परिवार में कुछ अनकहीं बातें होती हैं, कुछ अधूरे गिले शिकवे होते हैं, कुछ पुरानी चोटें होती हैं, लेकिन फिर भी जब मुश्किल समय आता है तो सबसे पहले परिवार ही साथ खड़ा मिलता है। आज अगर आपके घर में माँ पिताजी हैं तो उनके साथ बैठिए, अगर दादा दादी हैं तो उनकी बातें सुनिए, अगर भाई बहन हैं तो दूर हो गए हैं तो उन्हें फ़ोन कीजिए, क्योंकि समय बहुत जल्दी बदल जाता है। एक दिन वही घर जहाँ हर समय आवाज़ें गूंजती थी बहुत शांत हो जाता है, और तब इंसान को सबसे ज़्यादा याद आती है घर की छोटी छोटी बातें। कई लोग जिंदगी में बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन घर लौटने पर बात करने वाला कोई नहीं होता, और कुछ लोग छोटे घरों में रहते हैं लेकिन उनके पास प्यार बहुत होता है। ये फर्क है मकान और घर में। मकान खरीदे जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। और अब इस महफिल के आखिरी पड़ाव में यही कहना चाहूंगी कि अगर आज इस कार्यक्रम को सुनते हुए आपको अपने घर की याद आ गई हो, तो माँ की आवाज़ की याद आ गई हो, पापा का चेहरा याद आ गया हो, या किसी पुराने त्यौहार की तस्वीर आंखों में तैर गई हो, तो आज ही अपने परिवार को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि जिंदगी की असली कमाई रिश्ते ही होते हैं। परिवार वह जगह जहां इंसान दुनिया से हार कर भी लौटे तो उसे फिर से जीने की वजह मिल जाती है, इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज की महफिल यहीं तक। अपने परिवार को समय दीजिए, क्योंकि एक दिन यादें तो रहेंगी लेकिन शायद वो लोग पास न रहे। आप सुन रहे थे रसधारा, और आज वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है दुनिया भर में, तो इसी बारे में बात हो रही थी हमारे बीच। फिलहाल के लिए बैक टू बैक दो गाने आप लोगों के लिए छोड़े जाती हूँ, और एक बागबान से, दूसरा कभी खुशी कभी गम से, और उसके बाद मिलते हैं ठीक 12 बजे कार्यक्रम सुरभि के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ही हुई मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल।
1: It's Valentine's Day.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकर योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मेडिकल नीट UG परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ED ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ED को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं। भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नांगानुगु को हराया। और IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचार चैनल है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 10:15 और

52 सेकंड हो रहे हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं चैनल संचेता पर आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन और मैं हूँ आपकी हदिल अजीज दोस्त शाइस्ता नाज और आप सभी सामीन को मेरा प्यार भरा आदाब। सामीन कलाम सबसे पहले पेश है आईना। आईना में आज आप समाअत फरमाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर गुफ्तगु। सबसे पहले पेश है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी आलमी यौम खानदान। हर साल 15 मई को दुनिया भर में आलमी यौम खानदान मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद खानदान की अहमियत को उजागर करना, खानदानी रिश्तों को मजबूत बनाना और मुआशरे में खानदान के किरदार को समझना है। अक्वामे मुत्तहिदा ने 1993 में इस दिन को मनाने का ऐलान किया ताकि दुनिया भर में लोगों को ये एहसास दिलाया जा सके कि मजबूत खानदान ही मजबूत मुआशरे की बुनियाद होती है। दोस्तों खानदान सिर्फ चंद अफराद का मजमुआ नहीं बल्कि मोहब्बत इत्माद कुर्बानी और एहसास का दूसरा नाम है। इंसान दुनिया में आँख खोलते ही सबसे पहले अपने ख़ानदान को देखता है। माँ की शफ़क़त, बाप की रहनुमाई, बहन भाइयों की मोहब्बत और बुज़ुर्गों की दुआएं, यही वो ख़जाने हैं जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जहाँ हर शख्स अपनी मसरूफियात में गुम है वहाँ ख़ानदानी रिश्ते कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक ही घर में रहते हुए भी लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया और मसरूफ़ तर्ज ज़िंदगी ने ख़ानदान के अफराद के दरमियान फासले बढ़ा रहे हैं। पुराने ज़माने में मुश्तरक ख़ानदान का तसव्वुर बहुत मजबूत था। बुज़ुर्गों की मौजूदगी घर में बरकत समझी जाती थी। बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी से कहानियाँ सुनते, तहजीब सीखते और मोहब्बत बांटते थे। लेकिन आज के दौर में अक्सर लोग तन्हाई का शिकार हैं। यही वजह है कि आलमी यौम ख़ानदान हमें ये पैगाम देता है कि हम अपने ख़ानदान के लिए वक्त निकालें, एक दूसरे की बात सुने और रिश्तों को मोहब्बत से सींचें। खानदान इंसान को सिर्फ सहारा ही नहीं देता बल्कि अच्छी तरबियत भी फराहम करता है। बच्चों की शख्सियत साजी में खानदान का किरदार सबसे अहम होता है। अगर घर का माहौल मोहब्बत अदब और एहतराम से भरा हो तो बच्चे भी अच्छे इंसान बनते हैं। आज आलमी यौम ख़ानदान के मौके पर हमें यह हद करना चाहिए कि हम अपने ख़ानदान को वक्त देंगे, बुज़ुर्गों की इज्जत करेंगे और बच्चों की बेहतरीन तरबियत करेंगे और अपने रिश्तों में मोहब्बत बर्दाश्त और खलूस पैदा करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जो हिंदी अदब के काफ़ी माहिर अदीब थे। महावीर आचार्य प्रसाद द्विवेदी बहुत ही हिंदी के बेहतरीन अदीब रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पैदाइश 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के ज़िला रायबरेली के गांव दौलतपुर में हुई। इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने रेलवे महकमा में मुलाजमत अख्तियार की मगर अदब से गहरी दिलचस्पी ने उन्हें जल्द ही अदबी दुनिया का अहम नाम बना दिया। वो एक बेहतरीन शायर, मजमून निगार, मुतरजिम और सबसे बढ़कर एक कामयाब माहिर थे, मुदीर थे। उनकी अदबी खदमात की वजह से हिंदी अदब के एक पूरे दौर को दूसरी लीग कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी जबान को सादा, बामकसद और अवाम के करीब बनाने की कोशिश की। उस ज़माने में अदब ज़्यादातर तफरी तक महदूद था मगर द्विवेदी, जिसने अदब को समाजी सलाह, कौमी बेदारी और अखलाकी तालीम का जरिया बनाया। उन्होंने मशहूर अदबी रसाला सरस्वती की अदारत संभाली। उनकी अदारात में यह रसाला हिंदी अदब का सबसे मोतबर प्लेटफॉर्म बन गया। किसी कई बड़े अदीबों और शायर को मुतारिफ कराने का सेहरा भी उन्हें के सर जाता है। दूसरी, द्विवेदी जी सिर्फ अदीब नहीं थे बल्कि एक समाजी मसलाह भी थे। उन्होंने ख़वातीन की तालीम, समाजी बुराइयों के खात्मे और कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया। उनकी तहरीरों में मुल्क से मोहब्बत, समाजी इंसाफ और अखलाकी इकदार नुमाया तौर पर दिखाई देती हैं। वो चाहते थे कि अदब सिर्फ किताबों तक महदूद ना रहे बल्कि अवाम की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नई नस्ल के लिखने वालों की रहनुमाई की। मशहूर शायर मैथिली शरण गुप्ता समेत कई अदीब उनसे मुतासिर हुए। उन्होंने हिंदी नसर को मजबूत बना दिया और ज़बान में सादगी और शाइस्तगी पैदा की।
یہی وجہ ہے کہ آج بھی انہیں جدید ہندی ادب کے مماروں

में शुमार किया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि कलम की ताकत मुआशरे को बदल सकती है। उन्होंने अपनी मेहनत, इल्म और बसीरत से हिंदी अदब को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज भी उनकी खदमात अदब के तलबा, असातिज़ा और लिखने वालों के मशाले राह हैं। दोस्तों, आज के दिन, उनकी यौम पैदाइश के दिन, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों, ये था आज का आईना, जिसमें आप समाअत फरमा रहे थे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की यौम पैदाइश पर गुफ्तगू। चलिए सुनते हैं अब एक खूबसूरत नगमे, तुझे प्यार करते करते, अलका याग्निक की आवाज़ में। आपकी समातों के हवाले करती हूँ ये नगमा।

दोस्तों, भी आप अलका याग्निक की आवाज़ में ये बेहतरीन नगमा सुन रहे थे। फिल्म का नाम था नाचाज, कलाम था राहत इंदौरी का और मौसीकी से सजा था अनु मलिक ने। दोस्तों, पेश है मंजरनामा। मंजरनामा में आज आप समाअत फरमाएंगे जिगर मुरादाबादी, मोहब्बत और इंसानियत का शायर, इस मौसु पर गुफ्तगू। उर्दू शायरी की दुनिया में जिगर मुरादाबादी एक ऐसा रोशन नाम है जिसने अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत, इंसानियत, दर्द दिल और ज़िंदगी के जज्बात को नहायत खूबसूरती से पेश किया। उनका असल नाम अली सिकंदर था, लेकिन अदबी दुनिया में वो जिगर मुरादाबादी के नाम से मशहूर हुए। वो 6 अप्रैल 1890 को उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में पैदा हुए। उनकी शायरी में इश्क की लताफत भी है और इंसान दोस्ती का पैगाम भी। जिगर मुरादाबादी को अमूमन रोमानवी शायर कहा जाता है, लेकिन उनकी शायरी सिर्फ महबूब के हुस्न तक महदूद नहीं। उन्होंने इंसान की दुख दर्द, मोहब्बत की पाकिजगी, भाईचारे और इखलाकी कदरों को भी अपनी गजलों में जगह दी। उनके शार दिल को छू लेने वाली सादगी और मौसीकियत रखते हैं। यही वजह है कि उनकी गजलें अवाम और खास दोनों में बेहद मकबूल रहे। जिगर मुरादाबादी की शायरी का सबसे नुमाया पहलू मोहब्बत है। उनके नज़दीक मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाली ताकत है। वह इंसानों के दरमियान नफ़रत के बजाय मोहब्बत और उख़वत को फ़रोग़ देना चाहते थे। उनके कई अशार इंसान के दिल में उम्मीद और नरम जज्बात पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर, ये इश्क नहीं आसान, हमें इतना तो समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस शेर

में इश्क की गहराई और सच्ची मोहब्बत की शिद्दत को नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। जिगर मुरादाबादी की शायरी में इंसानियत का जज्बा भी नुमाया नजर आता है। वह इंसान को इंसान से मोहब्बत करने का दर्स देते हैं। उनके नज़दीक असल अजमत दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और दूसरों के दर्द को महसूस करने में है। उनकी शायरी में नर्म लहजा खलूस और दर्दमंदी पाई जाती है जो सामे या कारी के दिल पर गहरा असर छोड़ती है। जिगर मुरादाबादी ने अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किलात और आजमाइशों का सामना किया लेकिन उन हालात ने उनकी शायरी को मज़ीद पुख्ता और असरंगेज बना दिया। उनके कलाम में ज़िंदगी के तल्ख तजर्बात भी मिलते हैं और उम्मीद की रोशनी भी। यही वजह है कि उनकी ये गज़लें आज भी अदब के शायकीन के दिलों में ज़िंदा हैं। इन्हें उर्दू अदब में नुमाया खदमात के तराफ में 1958 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। उनका मजमुआ कलाम आतिशे गुल उर्दू शायरी का एक अहम सरमाया माना जाता है। कहा जा सकता है कि जिगर मुरादाबादी सिर्फ मोहब्बत के शायर नहीं थे बल्कि इंसानियत खलूस और आला इंसानी इख्तार के अलमबरदार भी थे। उनकी शायरी आज भी लोगों को मोहब्बत भाईचारे और इंसानी दोस्ती का पैगाम देती है। उर्दू अदब में उनका मकाम हमेशा बुलंद रहेगा। जिगर मुरादाबादी उर्दू शायरी के उन अजीम शायरों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत इंसानियत खलूस और ज़िंदगी के खूबसूरत जज्बात को आम किया। उनकी शायरी में न सिर्फ इश्क व मोहब्बत की नज़ाकत मिलती है बल्कि इंसान दोस्ती बर्दाश्त और अखलाकी इक़दार का गहरा पैगाम भी नुमाया नजर आता है। यही वजह है कि जिगर मुरादाबादी को मोहब्बत और इंसानियत का शायर कहा जाता है। जिगर मुरादाबादी का असल नाम अली सिकंदर था। वह 6 अप्रैल 1890 को मुरादाबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद वो शायरी की दुनिया में माइल हो गए। उनके वालिद भी शेर व अदब का ज़ौक रखते थे इसलिए जिगर को बचपन ही से अदबी माहौल मैसर आया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी शायरी ने अवाम के दिलों में जगह बनाई और वो मुआशायरों के मकबूल शायर बन गए। जिगर मुरादाबादी की शायरी की सबसे बड़ी खसूसियत सादगी और दिलकशी है। उनके अशार मुश्किल अल्फाज या पेचीदा ख्यालात से भरपूर नहीं होते बल्कि आम इंसान के दिल की आवाज़ मालूम होते हैं। उनकी गज़लों में मोहब्बत का जज्बा नहायत पाकीज़ा और रूहानी अंदाज में पेश किया गया है। उनके नज़दीक मोहब्बत सिर्फ दो अफराद के दरमियान ताल्लुक का नाम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खैरख्वाही का जज्बा है। वह इंसानों के दरमियान नफरत तासुब और दुश्मनी के खिलाफ थे। उनकी शायरी लोगों को एक दूसरों के करीब आने मोहब्बत बांटने और दिलों को जोड़ने का दर्स देती है। उनके अशार में नर्म लहजा और मिठास पाई जाती है जो सुनने वालों के दिल में उतर जाती है। दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हसीन गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। देखिए शेर में मोहब्बत के जज्बे को नहायत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। जिगर मोहब्बत को इंसान की ज़िंदगी से बड़ी ताकत समझते हैं। मगर जिगर मुरादाबादी की ज़िंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने गुरबत तन्हाई और मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना किया लेकिन उन तमाम तजर्बात ने उनकी शायरी में दर्द और गहराई पैदा कर दी। उनके कलाम में ज़िंदगी की हकीकी भी है और उम्मीद की रोशनी भी। वह इंसान को मायूसी के अंधेरों से निकाल कर मोहब्बत और उम्मीद की तरफ ले जाना चाहते थे। उनकी शायरी में सूफियाना रंग भी नुमाया है। वो इश्क को खुदा तक पहुंचने का ज़रिया समझते थे। उनके नज़दीक सच्ची मोहब्बत इंसान को बेहतर इंसान बनाती है इसलिए उनके अशार में रूहानी सुकून और दिल की पाकिजगी का एहसास मिलता है। जिगर मुरादाबादी सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने अखलाक नरम मिजाजी और इंसान दोस्ती से भी लोगों के दिल जीते। मुशायरों में उनकी आवाज़ अंदाज़े बयां और मतरनम लहजा सामईन को मसहूर कर देता था। लोग दूर दूर से उनका कलाम सुनने आते थे। उनकी अदबी खदमात के तराफ में उन्हें कई एजाजात से नवाजा गया जिनमें साहित्य अकादमी अवार्ड ख़ास तौर पर अहम है। उनका मजमुआ कलाम आतिशे गुल उर्दू अदब का कीमती सरमाया समझा जाता है। आज भी जिगर मुरादाबादी की शायरी नई नस्ल के लिए मोहब्बत इंसानियत और भाईचारे का पैगाम रखती है। उनके अशार दिलों में उम्मीद जगाते हैं और इंसान को मोहब्बत के रास्ते पर चलने की तरगीब देते हैं। उर्दू अदब में उनका नाम हमेशा एहतराम और मोहब्बत के साथ लिया जाता रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का मंजरनामा जिसमें आप समाप्त फरमा रहे थे।
جگر مرادآبادی، محبت اور انسانیت کا شاعر

0: सामिन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंस खेल खेल में, जहां इल्म भी है, तफरी भी है और हैरतों का जहां भी। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि पानी के ताल्लुक से रोजमर्रा में क्या क्या जरूरियात है और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, और आज हम किसी और मौजू पे बात करेंगे साइंस खेल खेल में। देखते हैं आज हमारे उस्ताद क्या सिखाते हैं। तो हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं सरकारी स्कूल के टीचर मुश्ताक अहमद साहब। सर, आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में खैर मकदम है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: सर। आज आप हमारे सामीन को क्या बताएंगे, किस मौजू पे बात करेंगे?
1: आज जो है हम लोग जो है सामीन हजरात को हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बताएं।
0: जी, हीट एंड टेम्परेचर।
1: जी, आज मौजूदा दौर में हम लोग देखते हैं तो हर तरफ जो है हीट एंड टेम्परेचर से हम लोग घिरे हुए।
0: जी बिल्कुल।
1: जी, तो टेम्परेचर बॉडी का होता है, हीट क्या है, ये बच्चों को समझाना है। ये कामेन जो हजरात हैं, आप समझने की कोशिश करें कि हीट क्या होता है। सबसे पहले हीट समझा जाए, उसके बाद उसको टेम्परेचर से को रिलेट कर देंगे। हीट क्या है? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी।
0: जी
1: ठीक है, एक तरह का ये एनर्जी है, और ये अगर बॉडी के अंदर हीट है तो हीट आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर आपका जा रही है तो हीट के जाने में हम देखते हैं टेम्परेचर का वजूद होता है। कि अब जैसे ही

0: अगर हम किसी बॉडी को पकड़ रहे हैं, अगर वो हमको गर्म लग रहा है तो हम कहेंगे कि वो मेरे टेम्परेचर उसका ज्यादा है, और अगर हम पकड़ रहे हैं उस चीज को, अगर थोड़ा ठंडा लग रहा है तो हम कहेंगे कि उसका टेम्परेचर कम है,
1: कम है।
0: तो ये टेम्परेचर क्या है, किसी भी बॉडी का हरारती हालत है। अब इसको समझना कि हरारती हालत जो है ये गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है ना। कुछ चीजें ठंडी हैं, कुछ चीजें गर्म हैं, और हम जब किसी चीज को छू रहे हैं तो हमको ठंडा महसूस हो रहा है या गर्म महसूस हो रहा है। इसको समझने की क्या है कि बच्चों इसको और सामईन हजरात इसको समझे कि जैसे हम उसको टच करते हैं ना, तो अगर वो गर्म चीजें हैं तो उसकी गर्मी मेरे अंदर आने लगती है, और मेरी जो सर्दी है उधर चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से हमको क्या है कि वो चीजें जो है हमको गर्म महसूस। और उसके ऑपोजिट, उसके बरक्स, अगर हम किसी ठंडी चीज को छूते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। ये दो बुनियादी बातें हैं टेम्परेचर और हीट के ताल्लुक से समझना, कि इसको अगर हम समझें कि हीट एंड टेम्परेचर में ये ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, ठीक है, तो हीट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हमें बच्चों को समझाना कि हीट जो है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हम पर को मुतासिर कर रही है। अगर देखा जाए कि हीट ना हो तो फिर खाना नहीं बनेगा।
1: हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है।
0: अगर हम खाना बनाना चाह रहे हैं तो हमको हीट चाहिए, चाहे आप जिस जराये से दें उसको, चाहे ओवन में आप पकाएं, चूल्हे पर पकाएं, आप उसको किसी तरीके से भी पकाएं, आपको हीट चाहिए। और जहां हीट आएगा वहां फिर टेम्परेचर का कंसेप्ट चलाएगा खुद से कि भाई हम कितना टेम्परेचर तक पकाएं, है ना। तो उसके लिए हम लोग देखें अभी मौजूदा दौर में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इतने सामान निकल गए हैं कि प्रेशर कुकर भी है। तो प्रेशर कुकर एक तो अपने आप में पुराने दौर का एक बहुत बड़ा ईजाद है। आज के दौर जदीद में देखिएगा कि राइस कुकर बना हुआ है, तो उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक से कन्वर्ट करके 10 मिनट लिख कर उसमें चावल डाल दिया, खुद ब खुद पक गया चावल, है ना। तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करना या इस तरीके से बनाना, ये सारी चीजें जो है, ये टेम्परेचर हीट का जब तक कंसेप्ट नहीं रहेगा, मतलब बनाना तो ठीक है हम लोग बना, तो ये बनाना बजायर बनाना है, लेकिन हमको लगता है कि पहले की औरतें ज्यादा मतलब साइंटिफिक थी, कि वो लोग समझती थी कि कहाँ चीजें कहाँ रखने से उनको क्या होगा। जैसे मैं गाँव गया, गाँव में मैंने देखा कि चूल्हा है मिट्टी का, और उसी मिट्टी से बना हुआ एक फ्रिज नुमा कबाड़ है। तो पता चला क्या कि हम लोग जो है ना इसमें खाना जो है ना रख देते हैं, इसमें सेफ रहता है खाना, कि वो क्या है कि वो मौतदल टेम्परेचर पर रहता है जी। भाई उसका
1: मिट्टी
0: की वजह से। अब मिट्टी में क्या खसूसियत है कि मिट्टी में ये खसूसियत है कि ये जल गर्म नहीं होगा। अब देखिएगा जो पुराने घर होते हैं, और मिट्टी का घर और एक ईंट का घर, दोनों में फर्क है
1: जी।
0: अगर गर्मी के दिन में हम लोग मिट्टी के घर में रहेंगे तो हमको इतनी गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन अगर ईंट के घर में रहेंगे तो गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि ईंट के घर में क्या है कि जो रोशनी ईंट को मिल रही है वो ऑब्जर्व कर ले रहा है, और उसके अंदर वो जो हिद्दत है, वो शिद्दत है, जो टेम्परेचर है, वो अंदर ट्रांसफर कर देता है। और मिट्टी चूंकि बैड कंडक्टर होने की वजह से क्या है कि वो हीट तो ले रहा है लेकिन ट्रांसमिट नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप वो मिट्टी के घर में अपने आप को कंफर्टेबल समझिए कि भाई हम कंफर्टेबल हैं। अगर बच्चों को हम लोग इस तरीके से देखें कि मिट्टी का घर है और ईंट का घर है, तो पहले बिचाली वाला भी घर होता था, देखिए
1: हाँ,
0: तो बिचाली वाला जो घर है उसमें भी ये हीट एंड टेम्परेचर काम आता है, क्योंकि वो भी बैड कंडक्टर होता है। तो देखिएगा कि बर्फ जो है, बर्फ जब लाते हैं तो उसको छोटा छोटा क्या करते हैं,
1: कुछ
0: बुरादे होते हैं
1: डालकर रखा जाता
0: ताकि पिघले नहीं बर्फ। तो ये क्या लॉजिक है, इसमें हीट एंड टेम्परेचर कहाँ है? इसमें भी यही है कि उसके टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, सामने जो मेरा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उसको बचाना है, उसको बचाने के लिए छोटे छोटे बुरादे जो है हम डाल दिए, जो बैड कंडक्टर होते हैं, वो आपको हीट को बाहर का अंदर आने नहीं देगा, और अंदर का जो सर्दी है उसको बाहर जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से बर्फ ज्यादा देर तक अपनी हालत में मुआयन रह सकता है। ये बच्चों को हीट के ताल्लुक से बताना। देखिए पुराने दौर में हमारी अम्मा जो है, हम देखें कि हांडी जो है, हांडी में ना नीचे लेप लगाती थी। ये जो लेप लगाना, ये क्या है कि क्यों लेप लगाते हैं, जैसे बहुत सारा हम लोग डेग वगैरह

0: भी देखते हैं बड़े बड़े, तो उसमें नीचे में लेप
1: मिट्टी का लेप लगाया जाता है।
0: तो क्या है उसको समझना कि ये क्या है कि हीट को रिटेन करने के लिए, कि अगर हम लोग एक चूल्हे पर अगर हांडी को चढ़ा रहे हैं तो हीट हमको ज्यादा चाहिए कम वक्त में। तो रिटेंटिविटी के लिए क्या किया जाता है कि मिट्टी का लेप लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब वो हीट रिटेन कर लिया और उसमें खाना वगैरह पक रहा है तो ज्यादा जल्दी पक जाता। अभी प्रेशर कुकर का दौर, लेकिन जिस वक्त प्रेशर कुकर नहीं था या बड़े बड़े प्रेशर कुकर नहीं होते हैं जिसमें डेग वगैरह में खाना बनते हैं, तो उसमें अगर हम ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि ज्यादा देर तक हमारा हीट रहता है और वो रिटेंटिविटी कहलाता है कि हीट को रिटेन कर पाए ज्यादा देर तक। तो ये मिट्टी का लेप लगाने से क्या होगा कि हमारा जो है हीट जो है वो रिटेन कर पाएगा और हमारा खाना भी क्या होगा जल्द से जल्द पक जाएगा। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में आप और हम मुशाहदा करते हैं कि हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से जुदा नहीं है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में घंटों बात की जा सकती है और इसमें बहुत सारे लॉज हैं जो साइंस के ताल्लुक से, अभी मैंने जो छोटी छोटी बातें बताई वो सारी की सारी साइंस हैं
1: जी,
0: ठीक है। उसमें रेडिएशन होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है। तो ये क्या चीज है, पानी का बॉयल होना, पानी कैसे बॉयल हो गया, तो ये रेडिएशन कंडक्शन ये हीट एंड टेम्परेचर से ही ताल्लुक रखते हैं। तो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लाए तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा इर्द गिर्द जो भी अतराफ में चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग हीट और टेम्परेचर को यूज करते हैं।
1: मौसम की बात करें अगर तो हीट और टेम्परेचर का क्या असर रहता
0: है, हीट एंड टेम्परेचर अगर मौसम के ताल्लुक से बात करें कि मौसम अभी जैसे ऐसा मौसम अक्टूबर की थोड़ा टेम्परेचर ठीक हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर का इसके यही है कि टेम्परेचर चूंकि बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में तो मौसम में देखिएगा एब्रप्ट एक्सचेंज आता है कि भाई मई का महीना आया और गर्मी एकदम बढ़ गई
1: बहुत तेज गर्मी तेज,
0: और यही दिसंबर का महीना आया तो सर्दी हो जाती है। जरा इस बात को गौर किया जाए कि गर्मी और सर्दी में मौसमों का ताल्लुक जो है अगर हम इसको ले और फिर इसको हीट एंड टेम्परेचर से जोड़े तो ये कुदरत का एक निज़ाम है कि गौर से देखिए कि टेम्परेचर जो है सर्दी के दिनों में डाउन हो जाता है लेकिन सूरज जो है फुल फ्लेज में ही निकल रहा है। सूरज तो अपनी जगह पर कायम है लेकिन क्या है कि हवाएं जो है ये जो आपने कहा कि मौसम का ताल्लुक जो है टेम्परेचर कम हो गया या ज्यादा हो गया, इन हवाओं का ताल्लुक जब सर्द हवाएं चलने लगती हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है और जब ये हवाएं जो है गर्म होती हैं तो टेम्परेचर को क्या करती हैं बढ़ा देती हैं। और गर्मी में चूंकि हमारा यहाँ का मौसम कलकत्ते का ऐसा है कि हम लोग हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में रहते हैं
1: जी,
0: हमारा जो
1: का मौसम जरा गर्म होता है
0: गर्म और साथ ही साथ बेचैनी वाली गर्मी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, तो ये बेचैनी जो है पसीना ज्यादा आएगा आपको क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और ये ह्यूमिडिटी ज्यादा है कि क्या माने हैं, ये उसको अगर साइंसी तरीके से समझा जाए कि आपका पानी जो है वाटर पार्टिकल्स जो एयर में है छोटे छोटे, जो ये एयर पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं उसमें पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जिसको आबी बुखारात बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जब आपको सैरशुदा हो जाएगा सैचुरेटेड हो जाएगा तो अब आपको और मजीद उसके अंदर पानी लेने की सलाहियत नहीं होती। गर्मी में यही मामला होता है, गर्मी में क्या होता है कि हमारे जिस्म से पसीना तो निकल रहा है लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड है, हॉट भी है और ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वो हमारा ह्यूमिडिटी ले नहीं पाता है, हमारे बदन से जो गर्मी निकल रही है उसको वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें गर्मी ज्यादा लगती है और पसीना भी ज्यादा आता है। इसके बरक्स अगर आप दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में क्या है कि हॉट कंडीशन है बट ह्यूमिडिटी नहीं है,
1: ह्यूमिडिटी कम है,
0: ठीक है। ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से क्या है वहाँ पसीना नहीं आएगा लेकिन लू वाली जो धूप है
1: वो
0: चलेगी, तो ये टेम्परेचर वहां भी बढ़ा हुआ है और कलकत्ते का भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन कलकत्ते का टेम्परेचर बढ़ा भी है और बहुत ज्यादा थोड़ा तकलीफ दे है बनस्बत के दिल्ली के। तो ये टेम्परेचर का ताल्लुक जो है वो एनवायरमेंट में हवा के ताल्लुक से होता है कि हवा के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जो आबी बुखारात जिसको बोलते हैं उसमें अगर पानी लेने की सलाहियत है तो आपका देखिएगा पसीना ऑब्जर्व हो जाएगा और जल्द आपको रिलीफ मिलेगी। जैसे हम पसीना से सराबोर होकर अगर पंखा के नीचे बैठते हैं तो देखते अपने आप को रिलीफ महसूस करते हैं,
1: बहुत ठंडा फील होता है।
0: तो ये पूरा का पूरा हीट एंड टेम्परेचर पर है कि आपके बॉडी का जो ठंडकपन कैसे आया, कि वो

0: जो पसीना निकला था वो बाहर आ गया, जिसकी वजह से आपका बॉडी कूल हो गया। कूल माने आपका टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने की वजह से आपको क्या होगा, थोड़ा सा आप रिलीफ महसूस कीजिएगा पंखा के नीचे। यही बाहर फिर निकलेंगे तो हमें फिर दुश्वारी
1: तो महसूस होगी।
0: जी, आज की ये जो टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें आई।
1: जी बिल्कुल, साइंस के ताल्लुक से आपने हमें हीट और टेम्परेचर के बारे में समझाया और सिखाया। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम साइंस को खेल खेल में अपने सामीन को समझाएं। साइंस सिर्फ याद न की जाए बल्कि समझा जाए, उसे समझना जरूरी है, उसका तजुर्बा करना बहुत जरूरी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सामीन को बहुत कुछ सिखाया।
0: बहुत शुक्रिया।
2: दोस्तों भी आप समाप्त फरमा रहे थे साइंस खेल खेल में, जिसमें बातें हो रही थी हीट और टेम्परेचर की, जिसे पेश कर रहे थे मुश्ताक अहमद साहब। बारिश की बरसती बूंदों ने जब तक दस्तक दी दरवाजे पर, बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो, अंदाज तुम्हारे जैसा था। हवा की हल्की झोंकों की, हवा के हल्की झोंकों की जब आहट पाई खिड़की पर, महसूस हुआ तुम गुजरे हो, एहसास तुम्हारे जैसा था। मैंने गिरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर, मैंने गिरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर, एक सर्द सा फिर एहसास हुआ वो लम्स तुम्हारे जैसा था। तन्हा है तन्हा मैं चला फिर बारिश में, तब एक झोंके ने साथ दिया। तन्हा मैं चला जब बारिश में, तब एक झोंके ने साथ दिया। मैं समझा तुम हो साथ मेरे, वो साथ तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी, रही ना बाकी आहट भी। फिर रुक गई वो बारिश भी, रही ना बाकी आहट भी। मैं समझा मुझे तुम छोड़ गए, अंदाज तुम्हारे जैसा था। बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो, अंदाज तुम्हारे जैसा था। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये बेहतरीन सा नगमा दिल की तन्हाई को।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल

दोस्तों भी आप सुन रहे थे फिल्म चाहत से ये नगमा। चलिए आवाज़ें थी कुमार शानू और शंकर महादेवन की। दोस्तों पेश है इस प्रोग्राम का आखिरी नगमा मेरा मन। चलिए सुनते हैं मेरा मन।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम था मेरा मन, कलाम था समीर का और मौसिकी से सजा था संजीव ने। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, अपनी दो शायस्ता को दीजिए इजाज़त, आदाब।

Cause I'ma live my life.

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 12:35 और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी कार्यक्रम सुरभि। तो चलिए दोस्तों कार्यक्रम सुरभि की शुरुआत करते हैं चर्चा है से, और चर्चा है में आज चर्चा करेंगे सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो अलग अलग विषयों पर। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस परिवार के लिए। परिवार एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया समा जाती है, जहां बिना कहे भी बातें समझ ली जाती हैं, जहां हमारी जीत पर सबसे ज्यादा खुशी होती है और हार में सबसे पहले जो हाथ थामता है वो परिवार ही होता है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है यानी उन रिश्तों का दिन।

जो हमें हर हाल में संभालते हैं, माँ की दुआएं, पापा की मेहनत, भाई बहन की नोक झोंक, दादा दादी का प्यार, ये सब मिलकर ही तो एक घर को घर बनाते हैं। आज की तेज भागती जिंदगी में हम अक्सर काम, मोबाइल और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनों के साथ बैठकर दो बातें करना भी कम हो गया है। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमें हमारे अपने लोग ही होते हैं। तो आज थोड़ा वक्त निकालिए, घर वालों के साथ बैठिए, एक कप चाय पीजिए, पुरानी बातें कीजिए और उन्हें ये एहसास दिलाइए कि वो आपकी ज़िंदगी में कितने ख़ास हैं। क्योंकि मकान दीवारों से बनता है, लेकिन घर घर सिर्फ प्यार और परिवार से बनता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज पर आपके और आपके परिवार को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज है हिंदी साहित्य और पत्रकारिता को नई दिशा देने वाले महान साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी की जयंती। उनका जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी को आधुनिक हिंदी गद्य और साहित्य के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने भाषा को सरल, प्रभावशाली और जनसामान्य के करीब बनाने का काम किया। वे प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादक भी रहे हैं। उनके संपादन काल में इस पत्रिका ने हिंदी साहित्य को नई पहचान दी और कई बड़े लेखों को मंच भी मिला। इसी कारण हिंदी साहित्य के एक दूसरे दौर को द्विवेदी युग भी कहा जाता है। द्विवेदी जी सिर्फ लेखक नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे। उनके लेखों में देशभक्ति, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और भारतीय संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है। आज भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी और साहित्य प्रेमी उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के मजबूत स्तंभों में गिनते हैं। तो ये थी चर्चा है, अब आगे बढ़ते हुए सुन लेंगे एक गाना, उसके बाद वापस मुलाकात होगी आपसे लेकर पहल।

अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक विशेष सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 17

ने 1-2 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 136वीं डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संपूर्ण ब्यौरा जैसे कि संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकरणों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर का उल्लेख होना आवश्यक है। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 700012 के नाम भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 1/6/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050, 0332216012, 0332216500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत के आवेदन पर डाक अदालत शब्द लिखना होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकारी आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना यही समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं पहल की ओर और आज पहल के अंतर्गत बात करेंगे फैमिली कोर्ट एक्ट 2005 की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जिसका सीधा संबंध केवल अदालतों से नहीं बल्कि रिश्तों, परिवारों और इंसानी भावनाओं से है। हम बात कर रहे हैं फैमिली कोर्ट एक्ट की, एक ऐसी व्यवस्था जिसे इस सोच के साथ बनाया गया कि परिवार से जुड़े विवादों को केवल कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और समझदारी से भी देखा जाए। भारत में परिवार हमेशा से समाज की सबसे मजबूत इकाई माना गया है, लेकिन समय के साथ रिश्तों में तनाव, वैवाहिक विवाद, संपत्ति से जुड़े पारिवारिक झगड़े, बच्चों की कस्टडी और गुजरा भत्ता जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सामान्य अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई अक्सर लंबी, जटिल और तनावपूर्ण हो जाती है। यही से जरूरत महसूस हुई एक ऐसी विशेष अदालत की जहां परिवार से जुड़े मामलों को अलग तरीके से देखा जाएगा। हालांकि भारत में फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 लागू हुआ था, लेकिन 2005 के आसपास इसमें कई राज्य और न्यायिक व्यवस्थाओं के स्तर पर महत्वपूर्ण सुधारों और विस्तारों पर गंभीरता से काम शुरू हुआ। इसलिए कई जगह इसे फैमिली कोर्ट व्यवस्था का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन का दौर भी कहा जाता है। फैमिली कोर्ट की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? जरा सोचिए, एक पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है, मामला अदालत तक पहुंच गया। अगर वही मामला किसी सामान्य सिविल कोर्ट में वर्षों तक चलता रहे, तारीख पर तारीख मिलती रहे और दोनों पक्षों की मानसिक स्थिति और खराब होती जाए, तो क्या सच में न्याय मिल पाता है? यही सबसे बड़ी चिंता थी। सरकार और न्यायपालिका ने महसूस किया कि परिवार से जुड़े मामलों में केवल कानून के कताबे काफी नहीं है, यहाँ इंसानी रिश्तों की समझ, बातचीत और सुलह की कोशिश भी जरूरी है। इसलिए फैमिली कोर्ट की अवधारणा सामने आई। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था पारिवारिक विवादों का जल्दी निपटारा, कोर्ट का माहौल कम डरावना और ज्यादा सहज बनाना, सुलह और समझौते को प्राथमिकता देना, बच्चों और महिलाओं के हितों की रक्षा करना, मानसिक तनाव को कम करना। फैमिली कोर्ट एक्ट की शुरुआत भारत सरकार ने 1984 में फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अंतर्गत किया।
इस कानून को लागू करने के पीछे एक बड़ी प्रेरणा भी थी, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को और बेहतर सुरक्षा देना। बाद में 2000 के दशक, खासकर 2005 के आसपास देश में

शहरीकरण, बदलती जीवन शैली और बढ़ते वैवाहिक मामलों को देखते हुए फैमिली कोर्ट्स की संख्या बढ़ाने और उनकी कार्यप्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कई राज्यों में नए फैमिली कोर्ट स्थापित हुए और पारिवारिक मामलों के लिए अलग न्यायिक ढांचा विकसित किया गया। फैमिली कोर्ट किन मामलों में देखता है? फैमिली कोर्ट मुख्य रूप से परिवार और वैवाहिक संबंधों से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है, जैसे तलाक के मामले, पति पत्नी का विवाद, गुजरा भत्ता, बच्चों की कस्टडी, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, संपत्ति से जुड़े कुछ पारिवारिक विवाद, गोद लेने से जुड़े मामले। और इन अदालतों की सबसे खास बात यह है कि यहां कोशिश होती है कि विवाद अदालत के बाहर आपसी समझ से सुलझ जाए। तो क्या फैमिली कोर्ट का माहौल अलग होता है? अगर अपने सामान्य अदालतों की तस्वीरें देखी हो तो वहां का माहौल काफी औपचारिक और तनावपूर्ण लगता है, लेकिन फैमिली कोर्ट का उद्देश्य थोड़ा अलग है। यहां जज के साथ साथ काउंसलर और मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई मामलों में सबसे पहले पति पत्नी को बातचीत और काउंसलिंग के जरिए समझाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कानून मानता है कि हर रिश्ता टूटने से पहले एक अवसर मिलना भी जरूरी है। महिलाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है ये कानून? जी हाँ, बिल्कुल। भारत में लंबे समय तक कई महिलाएं घरेलू हिंसा, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक दबाव के कारण न्याय तक पहुंच ही नहीं पाती थी। फैमिली कोर्ट व्यवस्था ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ महिलाएं गुजरा भत्ता मांग सकती हैं, बच्चों की कस्टडी के लिए आवेदन कर सकती हैं, घरेलू विवादों में कानूनी सुरक्षा पा सकती है, जल्दी सुनवाई की उम्मीद भी कर सकती है। कई मामलों में फैमिली कोर्ट ने महिलाओं और बच्चों को राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है फिर? जब परिवार टूटता है तो उसका सबसे गहरा असर बच्चों पर ही पड़ता है, इसलिए फैमिली कोर्ट में बच्चों के हित को बहुत महत्व दिया जाता है। कोर्ट ये देखने की कोशिश करता है कि बच्चा किसके साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगा, उसकी पढ़ाई और मानसिक स्थिति प्रभावित न हो, माता पिता का विवाद बच्चे के भविष्य को नुकसान न पहुंचाए। कई बार कोर्ट बच्चों की इच्छा भी जानने की कोशिश करता है। तो क्या फैमिली कोर्ट पूरी तरह सफल रहा? ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। फैमिली कोर्ट ने कई लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन चुनौतियां अब भी मौजूद है। जैसे कई शहरों में मामलों का बोझ बहुत ज्यादा है, तारीखों में देरी अब भी होती है, कोर्ट शहरों में पर्याप्त फैमिली कोर्ट नहीं हो, छोटे शहरों में पर्याप्त फैमिली कोर्ट नहीं होते हैं और कई लोग अपने अधिकारों से अनजान भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये व्यवस्था सामान्य अदालतों की तुलना में अधिक मानवीय और संवेदनशील मानी जाती है। समाज में बदलते रिश्ते और फैमिली कोर्ट आज के समाज की तेजी से बदल रहा है। लाइफस्टाइल बदल रही है, सोच बदल रही है, रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है। ऐसे समय में फैमिली कोर्ट केवल कानूनी संस्था नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हर विवाद का हल केवल सजा नहीं होता, कई बार संवाद भी समाधान बन सकता है। तो फैमिली कोर्ट एक्ट और उससे जुड़ी व्यवस्था का मूल उद्देश्य यही था कि परिवार से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ देखा जाए, जहां रिश्तों की टूटने को केवल केस नंबर बनाकर न देखा जाए बल्कि इंसानी भावनाओं को भी महत्व मिले, क्योंकि आखिर में अदालतें कानून से फैसले जरूर दे सकती है लेकिन रिश्तों को बचाने की कोशिश संवाद, समझ और संवेदना ही करती है, और शायद यही फैमिली कोर्ट की सबसे बड़ी सोच है। आप सुन रहे थे पहल, और पहल के अंतर्गत आज हमने बात की फैमिली कोर्ट एक्ट 2005 के बारे में। अब शेष बच गए हैं 5 मिनट और जाते जाते सुनवाना चाहूंगी फिल्म आजा नचले से राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना, और इस गाने के साथ ही मैं पापिया भी लूंगी आप सभी से विदा मिलूंगी किसी और दिन किसी और समय कुछ और बातों और गीतों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ ही हुई मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम।

0: Well, talking about family, yes, the importance of family. You know what? Multi-generational households where at least two adult generations live together can offer important benefits like shared income, child care, elder care and emotional support. In fact, in many cultures, they are a long-standing norm and a key safety net. At the same time, crowding unclear expectations about caregiving and finances and intergenerational conflict can cause stress if not managed carefully. Well, yes, so, you know, research suggests that outcomes are positive when household members have some privacy. Well, folks, in a short while, we will connect you to Delhi for the news and we'll come back with more music right at 1:10. So, till then, stay tuned on the Sanchaita channel of Akashwani, Kolkata.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर

0: दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सबदंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
0: और मैं अजीत। नमस्कार। राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पड़ जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियां जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
0: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
0: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
0: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
0: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
0: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
3: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं था कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
4: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
3: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे

0: तरफ उठती गिरती है। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां धातु और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं धातु का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर धातु अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। धातु, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। धातु मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने धातु से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथु और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट

0: इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962, जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
3: हाँ,
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहाल।
5: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
6: भतीजा सिंह, और चाट बना दे यार, सवेर होगी।
7: साहब,

0: काम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
0: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह और सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
3: Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big,

0: badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS foreign ministers meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की दोनों नेताओं के बीच रक्षा पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की
2: यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विंदन का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा

0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
1: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया।

0: परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला

0: नीदरलैंड के कुनलाउत विदर्सन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की अलीना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन संचयिता प्रचार तरंगे। एखन शास्त्रीय संगीतेर अनुष्ठाने तबला लहरा परिवेशन करबेन पंडित ज्योतिर्मय रायचौधुरी। ताल आदा चौताल। शिल्पीके हारमोनियामे सहयोगिता करेछेन हिरणमय मित्र।

धात्रक अधिकी टकी ना धात्रक अधिकी टकी ना धाती धागे न धागे ती ना धात्रक अधिकी टकी ना ता तिरकट अधिकी टके ना धाती धागे ना

धा क्रेधा तीटा धागत रख दिंगे तीना क्रेधा तीटा धागत रख दिंगे तीना क्रेधा क्रेता तीटा धागत रख दिंगे तीना क्रेधा तीटा धागत रख दिंगे।

0: ওয়েভে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:59:40। পরবর্তী অনুষ্ঠান একটু পরে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে শক্তি সিং। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय व्यवहार और प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबूधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गुरुग्राम में भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान में 11वें विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना DMK के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. He arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome, with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Both the leaders discussed energy cooperation and bilateral trade, high amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable.
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
4: Addressing President Sheikh Mohammed bin Zayed as a brother, Mr. Modi praised the resilience shown by the UAE leadership during challenging times, reaffirmed India's support for the Emirates and said dialogue and diplomacy remain the only path forward in the current period of global conflict. On the second leg of his visit, the Prime Minister will arrive in the Netherlands this evening. Thereafter, he will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar has said that India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Addressing the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 in New Delhi, Dr. Jaishankar said that the meeting reflects the importance that all leaders attach to strengthening multilateral cooperation in a rapidly changing world. Union Defence Minister Rajnath Singh laid the foundation for Advanced Medium Combat Aircraft Program facility at Puttaparthi in Sri Satya Sai district of Andhra Pradesh, along with Chief Minister N. Chandrababu Naidu today. Addressing the gathering, Defence Minister Rajnath Singh stated that the newly launched defence projects would strengthen national security, accelerate industrial growth and create large-scale employment opportunities for the youth. The Advanced Medium Combat Aircraft Program facility will serve as the integration, development and flight testing hub for India's indigenous 5th-generation stealth fighter aircraft program. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia today chaired a high-level review meeting to assess India's preparations for the Commonwealth Games 2026, scheduled to be held in Glasgow, Scotland. He reviewed athlete preparation, training, logistics, welfare and coordination for India's Commonwealth Games 2026 campaign. The meeting also reviewed the progress of inter-ministerial coordination efforts being undertaken by the Sports Secretary. The Madhya Pradesh High Court today declared the Bhoj Shala complex in Dhar district a Hindu temple. The court said that the temple of goddess Saraswati existed here and the site was a center of Sanskrit learning. The court cancelled the earlier order that allowed Muslims to offer namaz at the site. The court reached its conclusion based on the Archaeological Survey of India's report and archaeological evidence. The court has handed over the administration and management of the complex to the ASI and the central government. The southwest monsoon is likely to set in over Kerala on the 26th of this month with a model era of plus minus 4 days. The normal date for southwest monsoon arrival over Kerala is 1st of June. India Meteorological Department has said that the conditions are favourable for the advance of southwest monsoon over parts of South Bay of Bengal, Andaman Sea and Andaman and Nicobar Islands to the next 24 hours. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semifinals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। कार्यक्रम है अभी उर्वशी का, लेकिन इससे पहले एक जरूरी सूचना। जी हाँ दोस्तों, 136वीं डाक अदालत की सूचना है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 17/6/2026 को पूर्वा 11:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36CR Avenue कोलकाता 7000112 में गूगल मीट, जिसमें वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 136वीं डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संपूर्ण ब्यौरा जैसे कि संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकरणों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यकाल। पश्चिम बंगाल सर्किल P36CR Avenue कोलकाता 7000012 के नाम भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 1/6/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी कि वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या फिर 0332210612 या फिर 0332210500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत के आवेदन पर डाक अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक विशेष सूचना 136वीं डाक अदालत के विषय में। अब चलते हैं, रुख करते हैं हमारे कार्यक्रम उर्वशी की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे सुरुचि की। दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और आप तो जानते ही हैं कि इस प्रचंड गर्मी में गर्मी की तपिश और इसके साथ सूरज की रोशनी हमारे घूमते हुए पंखे की तरह में यूं चलते हैं जैसे ऐसा लगता है कि और कुछ रही नहीं गया। लेकिन इस दोपहरी में 12 पारा या फिर जो भी पारा है

34 की डिग्री पार हो जाए या फिर 44 की, जब भी हमारा पसीने से बुरा हाल ही क्यों ना हो जाए, इस मौसम में एक ही चीज है जो जीने लायक हमें रखती है और वो है फलों का राजा आम। जी हाँ दोस्तों, साल भर हम जिस मिठास का इंतजार करते हैं वो इसी तपती धूप में पककर तैयार होती है। शायद कुदरत हमें ये इनाम देती है ताकि हम इस गर्मी को बर्दाश्त कर सके और इस मीठे फल का आनंद ले सके। तो दोस्तों, सुरुचि में आज हम बात करेंगे आम की, आम के उन खास व्यंजनों की जो हम सुबह से लेकर रात तक कुछ भी बना सकते हैं। और आइए सुनते हैं आम के बारे में, आम की रेसिपी के बारे में। दोस्तों, आम एक ऐसा जादुई फल है जिसे आप सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक दर्जनों चीजें बना सकते हैं। ऐसे ही हमारे चीजों में आज हम खास आपके लिए आम से बनाई जाने वाली बेहतरीन चीज बनाकर लाएंगे और आपके बारे में, उनको बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, आम की इस गर्मी में पके हुए आम या फिर कच्चे आम, इन सभी से जुड़े हैं कुछ खास रेसिपी। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आम के बारे में जानेंगे कि गुड़ आम यानी कि आम की खट्टी मीठी लौंजी, जिसे हम आम की चटनी की नाम से भी जानते हैं, उसे कैसे बनाते हैं। और उसके साथ हम बताएंगे आपको आम पापड़ यानी कि आम सट, जो कि बंगाल में बहुत ही फेमस है और खाने में वो इतना स्वादिष्ट और नरम है कि मुंह में घुल जाए, इसका भी तरीका हम आज जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे आम की चटनी, आम के पापड़ और आम रस के बारे में। आइए, मुंह में आ गया ना पानी आपके। गर्मियों के मौसम में कच्चे आम हो या फिर पके आम, इससे बनी हुई ये सारी चीजें यानी कि गुड़ का आम, आम की लौंजी, आम की चटनी और आम पापड़, ये भारतीय घरों की पहचान होती है। और साथ में आम का अचार, मैंने कहा ना, नाश्ते से लेकर आप रात के खाने तक आम के व्यंजन यूं ही बना सकते हैं। तो चलिए, आम की बातें कर रहे हैं तो मुंह में पानी तो आना है, चलिए पानी पीते ही जाएंगे या फिर हम गीत भी सुनेंगे। गीतों के साथ हम आम की खास व्यंजन आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन पहले अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, अरिजीत सिंह की आवाज में आप शरबतों भरे गीत से अपने प्यास तो बुझा लिए, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ सुरुचि में, कि गुड़ के आम की खट्टी मीठी लौंजी किस प्रकार बनाए, तो जल्दी जल्दी अपने कलम और कागज उठा लीजिए और गुड़ वाली आम की लौंजी आपको मैं बता रही हूँ कि गर्मियों का सबसे बेहतरीन ये डिश है। ये न केवल खाने का स्वाद को बढ़ाती है बल्कि आपको लू यानी कि हीट स्ट्रोक से भी बचाती है। जी हाँ दोस्तों, इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि और यहाँ पर हम बनाने की विधि भी बताएंगे और इसके फायदे भी है कुछ, ये भी बताएंगे। तो आइए जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए कि क्या है गुड़ के आम की लौंजी बनाने की विधि। तो दोस्तों, आवश्यक सामग्री ये है कि आप 500 ग्राम कच्चे आम ले लीजिए, छील कर उसको लंबे टुकड़े में काट दीजिए। गुड़ 300 से 400 ग्राम, अपने स्वाद के अनुसार जितना आप मीठा खाते हैं। और तड़का डालने के लिए आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ। सौंफ को ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। थोड़ी सी कलौंजी और मेथी दाना, और इसके साथ मसाले यानी कि नमक, काला नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला। अब दोस्तों, कढ़ाई में 2 चम्मच तेल आप गरम कीजिए, इसमें जीरा, सौंफ, कलौंजी और मेथी के दाने को डाल दीजिए। अब कटे हुए आम और हल्दी नमक डालकर 2-3 मिनट तक भूनें, और भूनने के बाद आधा कप पानी डालकर इसे ढक दे ताकि आम जो है वो नरम हो जाए। जी हाँ, अब आम जब नरम हो जाए, गल जाए, तब इसमें गुड़ और बाकी मसाले डालें। गुड़ को पहले से ही आप उसको तोड़कर किसी पानी में गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद उसको छान लीजिए ताकि उसमें जो भी गंदगी हो वो साफ हो जाए, और उसके बाद आप इसे आम के साथ डालें पानी में और ढक दीजिए। जब आम गल जाए और इसमें गुड़ और बाकी सूखे हुए मसाले डालने के बाद जब गुड़ में आम समा जाए तो और गाढ़ा होने लगे, तो इसे तब तक पकाएं जब तक चाशनी थोड़ी और गाढ़ी या फिर चिपचिपी ना हो जाए, और इसके बाद ये तैयार हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लौंजी 2-3 महीने तक खराब ना हो तो आप ये काम कर सकते हैं। पकाते समय इसमें पानी का बहुत कम प्रयोग करें, यानी कि बहुत कम मात्रा में पानी डालें, क्योंकि गुड़ जो है वो खुद पानी छोड़ेगा, और स्टोर करने के लिए पहले लौंजी को पूरी तरह से ठंडा होने

दीजिए। इसके साथ इसे हमेशा एक कांच के सूखे जार में रखें और कांच का ही बर्तन उपयोग करें, क्योंकि कांच का बर्तन अच्छा होता है। और कभी भी गीले हाथ या गीले चम्मच का इस्तेमाल नहीं कीजिए। अब मैं बताऊंगी कि लौंजी में गर्मी में इस लौंजी को, यानी कि आम और गुड़ की लौंजी को क्या फायदे होते हैं। वैसे दोस्तों, कच्चे आम में विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को ठंडा रखते हैं। इसमें मौजूद सौंफ, कलौंजी और काला नमक पेट की गैस और बदहजमी को दूर कर देते हैं। चीनी की जगह अगर हम गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे शरीर को भरपूर आयरन मिलता है और इससे इम्यूनिटी, यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो गर्मियों में होने वाली बीमारियों से लड़ती है। इसीलिए इसमें गर्मी में बहुत फायदे होते हैं। हमारे आयरन का स्रोत गुड़ है, पाचन में सुधार होता है, लू से बचाव होती है और हमारी इम्यूनिटी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। मगर एक सावधानी वाली बात यह है कि अगर आप इसे फ्रिज के बाहर रख रहे हैं तो इसे एक हफ्ते के अंदर खत्म कर ले। फ्रिज में रखने पर यह महीनों चलती है। और अगर आप मसालों में इलायची या सॉल्ट यानी कि अदरक का पाउडर डालने का स्वाद पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आम की लौंजी की रेसिपी। आशा है कि आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और इसे बहुत अच्छे से अपने पन्नों पे लिखा होगा। चलिए, मुंह मीठा करने का समय आ गया है तो चलते हैं मोहित चौहान की आवाज में सुन लेते हैं और इस गीत से मुंह मीठा भी कर लेते हैं।

जी हाँ, वैसे तो बर्फी खाकर मुंह मीठा और स्वादिष्ट तो हो ही गया होगा, लेकिन हमारी आम की चटनी भी ऐसे कोई बेस्वाद नहीं है। तो जानते हैं आम की चटनी की रेसिपी। कच्चे आम की चटनी वैसे तो गर्मियों के खाने का स्वाद और पोषण दोनों ही बढ़ा देती है। यहाँ इसे बनाने का तरीका और सुरक्षित रखने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी सामग्री है कि अब दो मध्यम आकार के कच्चे आम को छील लीजिए और काट लीजिए। एक कप उसमें ताजा पुदीना, आधा कप हरा धनिया और 3-4 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक और 1 चम्मच जीरा, स्वादनुसार नमक और काला नमक और 1 छोटा चम्मच गुड़ या फिर चीनी, खटास को बैलेंस करने के लिए। अब इसे बनाने का तरीका झटपट नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप आम, मिर्च, अदरक और लहसुन को मिक्सर में डालें। अब इसमें पुदीना, धनिया और सारे सूखे मसाले मिलाएं। बिना पानी डाले, ये बहुत कम पानी, 1-2 चम्मच डालकर दरदरा को पीस ले। अंत में गुड़ डालकर एक बार और चलाएं। आपकी चटनी तैयार है और खाकर देखिए क्या स्वाद आएगा। वैसे दोस्तों ताजी चटनी आमतौर पर 2-3 दिन चलती है, लेकिन इसे 15-20 दिन चलाने के लिए ये अपनाएं कि पीसते समय पानी बिल्कुल नहीं डालें। आम का अपना रस काफी होता है और पीसते समय 1 चम्मच सफेद सिरका डाल दीजिए। ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है और साथ में चटनी के ऊपर सरसों का तेल का तड़का लगाने से वो जल्दी खराब नहीं होती। इसके साथ आप हमेशा कांच के एयर टाइट बर्तन में इसे रखें और फ्रिज में ही स्टोर कर दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस चटनी के गर्मी में खाने पर आपको क्या फायदे होंगे। दोस्तों ये चटनी आपको लू से बचाएगी। कच्चे आम और पुदीने की तासीर ठंडी होती है, जो शरीर को अंदर से ठंडा रखती है। इसके साथ ही आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी। इसमें मौजूद जो जीरा और काला नमक आपने डाला था ना, वो कब्ज और एसिडिटी और बदहजमी को दूर कर देते हैं। इसके साथ ही गर्मियों में अक्सर हमारी भूख जो है वो कम हो जाती है। ये चटनी स्वाद तो जगाती है, लेकिन साथ में भूख भी बढ़ाने का काम करती है और साथ ही साथ इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, तो ये इम्यूनिटी बढ़ाती है और त्वचा को धूप के नुकसान से भी बचाती है। एक टिप दे रही हूँ, अगर आप इसे महीनों तक रखना चाहते हैं तो आपको इसे कद्दूकस करके उसमें नमक और हल्दी लगाकर धूप में सुखाएं और फिर तेल मसालों के साथ उसका कूचा या फिर लच्छा अचार की तरह स्टोर कीजिए। यहाँ दोस्तों ये आपको

तो साल भर अच्छी विटामिन सी इम्यूनिटी और आपको ठंड से रक्षा करेगी, पेट ठंडक करेगी, गर्मी से रक्षा करेगी। आइए लता मंगेशकर की आवाज में सुन लेते हैं ये गीत, मुंह मीठा तो ऐसा ही होता रहेगा आपका।

भाई उम्र जो भी हो, उस मोड़की में आम की चटनी का स्वाद तो सच में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। वैसे लता मंगेशकर जी की आवाज़ भी उम्र के मोड़ तक कहाँ रुकी थी, वो तो अंत तक ऐसे ही मीठा गाती रही हमारे आम की तरह, अपने नाश्ते से लेकर डिनर तक की हर

चीज में एकदम परफेक्ट। वैसे अब मैं आपको बताऊंगी आम के पापड़ की बहुत ही आसान विधि। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, आपको सबसे पहले 2 किलो पके हुए आम लेने हैं और उसके बाद आपको 150 या फिर 200 ग्राम चीनी का लेना है, साथ ही 1 चम्मच नींबू का रस और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर वैकल्पिक ब्लेड पर लगाने के लिए, उसमें थोड़ा सा घी भी। अब इसे बनाने का तरीका हमको जानना है कि आम को छीलकर टुकड़े करें और बिना पानी डाले मिक्सी में पीसकर उसको स्मूथ पल्प बना लीजिए। साथ ही पल्प को एक कढ़ाई में डालें, उसमें चीनी मिलाएं और मध्यम आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं, जब तक वो गाढ़ा और पारदर्शी दिखने लगे तब तक। और साथ में अंत में आपको नींबू का रस और इलायची पाउडर डालकर मिलाना है। साथ ही 2-3 बड़ी थालियों में घी लगाए आम के मिश्रण को थाली में पतला पतला फैला दे और इसके बाद इसे 1 से 2 दिन तक तेज धूप में रखे, मगर धूप कम है तो पंखे के नीचे भी 2-3 दिन में सुखा जा सकता है। उसके सूखने के बाद किनारे छुड़ाए और रोल करके या 1 चकोर टुकड़ों में काट लीजिए। अब इसमें क्या करना है कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कोशिश करना है, पूरी तरह से इसको सुखाए। अगर इसमें थोड़ी सी भी नमी है तो फंगस लग सकता है, इसे कड़क होने तक सुखाए। परतों के बीच में बटर पेपर या फिर प्लास्टिक शीट लगाकर रखें ताकि वो आपस में ना चिपके। इसे सूखे कांच के जार में भर के रखें। अगर आप इसे 1 साल से ज्यादा रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखें, बाहर ये 6 महीने आराम से चल जाएगा। और क्योंकि इसमें तुरंत ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा देने की शक्ति रखता है, इसमें आम की नेचुरल शुगर भी होती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर मिलाते हैं तो ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे जी मचलना और ऑफ सीजन का मजा तो बेहद ही आता है। तो दोस्तों, कच्चे आम या फिर पका हुआ आम, दोनों ही आम में आपको मजा तो आएगा ही, तो दो। लेकिन साथ ही में ये मजा ये है कि हमारे चुटकी घड़ी बता रही है कि आप आम के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि समय इसकी इजाजत नहीं देता। आइए इसी बीच छोड़े जाती हूँ आपको असरार और अख्तर चैनल की आवाज में। ये गीत फिल्म फैंटम से, सुनते रहिए रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: You are tuned to the Sanchaita channel of Akashvani, Kolkata, broadcasting on media wave 297.6 meters, corresponding to 1008 kilohertz. Here is the weather bulletin as received from the Alipur Meteorological Office. The maximum temperature recorded was 35.7 degrees Celsius, which was 0.1 degrees Celsius below normal, and the minimum temperature was 27.9 degrees Celsius, which was 0.9 degrees Celsius above normal. The maximum relative humidity recorded was 93%, whereas the minimum relative humidity stood at 60%. There was no rainfall recorded, and there is no weather warning for the fishermen along the West Bengal coast. Now the weather forecast for Kolkata and its neighborhood for the next 24 hours. It would be a partly cloudy sky, becoming generally cloudy towards the night. Thunderstorm with light rain is likely to occur in some areas towards night. The maximum temperature is likely to be around 36 degrees Celsius and the minimum temperature will be around 27 degrees Celsius. And that is the end of the weather bulletin. Now the announcement regarding the lost persons. Joy Das from East Topsia Road, Police Station Tiljala, Kolkata, informs that Shopun Das, who is mentally disbalanced, aged about 55 years, medium build, height 5 feet 5 inches, color skin shallow, mother tongue Bengali, is missing since 1st of May 2026. Information regarding the lost person may be intimated to the officer in charge, Missing Persons Bureau, CID, of West Bengal, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 700027. And that is the end of the announcement regarding the lost person. Now let's have a look at the programs to be broadcast on this channel later this evening. At 6 o'clock from Delhi, you'll listen to news in Hindi, followed by news in English at 6.05. At 6.10 p.m. from our station, you will listen to the Hindi program. Listen to news in Sanskrit at 6.20 p.m. from Delhi, followed by the Hindi program. The segment will be called Gul Gulshan. News in Hindi at 7 o'clock from Delhi, followed by news in English at 7.05. Listen to a Dotara recital by Shapun Kumar Burman at 7.10 p.m. from our station, followed by the Hindi Karikram Darpan at 7.30 p.m. Listen to film music at 8 o'clock from our station, followed by the sports news in Bengali at 8.10 p.m. Mixed melodies at 8.15. Samachar Sandhya from Delhi at 8.45 p.m. followed by news at 9 at 9 o'clock. Listen to the program Spotlight from Delhi at 9.16 p.m. Current affairs from Delhi again at 9.30. Listen to news in Bengali from our station at 10 o'clock. Again from Delhi at 10.10, you will listen to Vishwa Darpan, followed by World News at 10.20. Listen to the Western Music Program from our station at 10.30 p.m. where tonight we will bring you the show From Me to You. Listen to news in Hindi at 11 o'clock, followed by news in English at 11.05 from Delhi. And at 11.10 from our station, you will listen to Hindi film songs. This is the Sanchaita channel of Akashvani, Kolkata. And now please stand by for the news from Delhi in a short while from now.
1: Namaskar. Akashvani Samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्र का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ. जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउथ वितिदसन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

जी हाँ दोस्तों, शिक्षित परिवार और उन्नत परिवेश के बारे में हम क्या बताएं। जो घर शिक्षित होता है उसका परिवेश तो उन्नत होता ही है। दोस्तों, शिक्षित अगर घर होगा, शिक्षित अगर शहर होगा, तभी तो उसका परिवार और परिवेश भी उन्नत होगा। शिक्षित समाज, शिक्षित घर के साथ हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। तो आइए हम जानते हैं हिंदी वार्ता में, और इसके साथ उन्नत परिवेश कैसे जुड़ता है इसे भी जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, शिक्षित परिवार के साथ हम और आप दोनों ही यूं ही मिलकर कामयाब होंगे, जबकि आप पढ़ना चालू करेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस तरह के वार्तालाप अगर आप जरूरी करेंगे तो ही तो हमारे जो शिक्षित परिवेश है वो कामयाब होंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया कि जैसे स्लोगन से ही हमारा देश उन्नत हुआ है और साथ ही विकसित भी हुआ है। ये शिक्षक और परिवेश दोनों का तालमेल का सही पन है, तभी तो हमें कामयाबी मिल रही है। दोस्तों, जहां छात्र सवाल पूछने से ना डरे, तकनीकी और किताबों का सही मिश्रण ना हो और बच्चों की क्षमता को पहचानना और निखारना ना हो और इसके सख्त नियम नहीं हो बल्कि सीखने की ललक ना हो, वो कैसा इंडिया। वैसे शिक्षक केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते को सुगम बनाना एक अच्छे परिवेश का ही काम है। आप किसी स्कूल में हैं या किसी समाज में हैं, उसको शिक्षा देना आपका कर्तव्य है। क्योंकि हमेशा याद रखने की बात है कि शिक्षित परिवार से ही उन्नत परिवेश होता है, क्योंकि परिवार हमेशा पहली शिक्षा घर है, पहला विद्यालय है, जिसके माध्यम से उसका जो बच्चे का परिवेश है वो बढ़ता है। बच्चा अपनी माँ से अपनी मातृभाषा को सीखता है, अपनी माँ और पिता से उन शिक्षा को ग्रहण करता है कि उसे अपने समाज में किस तरह का व्यवहार करना है। ये बात सोले आने सच है कि एक शिक्षित परिवार ही वो नींव है जिस पर उन्नत समाज की इमारत खड़ी होती है। घर में की गई बातचीत का स्तर ऊंचा और शिष्ट रहना चाहिए और सही और गलत के बीच का फर्क जिससे आसानी से बन सकती है। जागरूक परिवार, जीवन शैली और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है जाना चाहिए। शिक्षा बेहतर अवसर और वित्तीय समझ पैदा करती है और इससे आने वाली पीढ़ी यानी कि बच्चों को बचपन से ही सीखने का माहौल भी मिल जाता है। आप अगर ग्रामीण या शहरी परिवेश में हैं तो इससे आपको और भी शिक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि एक शिक्षित परिवार पूरे समाज की तस्वीर को बदल देता है। अगर हम अपने बच्चों की परवरिश और उन्नत परिवेश के बीच के संबंध को पकड़ के देखें और उसका एक सेतु बनाएं, तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके घर का माहौल ही बच्चों पर असर पैदा करता है। जिस घर में बड़े पढ़ते हैं वहां बच्चे बिना कहे ही किताबों से जुड़ जाते हैं, और साथ ही शिक्षित परिवार में बच्चों को चुप कराने के बजाय उनके क्यों का जवाब दिया जाना चाहिए। इससे उनकी शिक्षा और जिज्ञासा क्षमता और भी बढ़ेगी। इसके साथ जब माता पिता जागरूक होते हैं तो बच्चे अपनी बाहरी दुनिया का सामना ज्यादा निडरता से करते हैं। आप अगर ग्रामीण और शहरी परिवेश में अंतर देखते हैं तो शिक्षित परिवार पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, और अगर यही बात शहरी की तो यहाँ पर शिक्षा प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने और नई तकनीक अपनाने में मदद करती है। शिक्षा का मतलब केवल स्कूल जाना नहीं होता, बल्कि अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदारी होना भी होता है। आपको कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप सीखने

योग्य बातें बना सकते हैं या फिर समाज में शिक्षा के प्रभाव पर आपको और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जहां शिक्षा होती है वहीं उन्नत प्रवेश होता है, क्योंकि आप ही उस जगह को बनाते हैं, सवारते हैं। जहां शिक्षा होती है उन्नत परिवेश का अपने आप बन जाना उचित हो जाता है। तो शिक्षा जागरूक करने के लिए, स्कूल जाने के लिए नहीं होती, बल्कि शिक्षा और उन्नत करने एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप अगर शिक्षित होंगे तभी तो जान पाएंगे डेवलप करने की शक्ति क्या होती है, ऐसा कहाँ होता है वैसा। इसे जानने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जहाँ शिक्षा का दीपक जलता है वहाँ का वातावरण अपने आप ही सुधरने लगता है। लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं। अंधविश्वास और पुरानी गलत परंपराएं खत्म होने से लगती है। साफ सफाई और पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। साथ ही लड़का लड़की और ऊंच नीच का भेदभाव भी कम होता है।

तो शिक्षक एक समाज को नहीं बल्कि पूरे समाज को जागरूक करता है। एक शिक्षक केवल समाज को नहीं पूरी मानवता और आने वाली पीढ़ियों को भी गढ़ता है। एक शिक्षक का प्रभाव समाज की सीमाओं से कहीं परे होता है। अगर वो शिक्षक परिवार में हो तो क्या बात है। वो शिक्षक माता पिता हो सकते हैं, वो शिक्षक घर का कोई बुजुर्ग हो सकता है जो बच्चे को शिक्षा अपने घर से ही दे। ये केवल विषय नहीं बल्कि सोचने का नजरिए को सिखाता है और राष्ट्र का निर्माण में सहयोगी होता है। डॉक्टर, इंजीनियर और नेता बनाने वाला व्यक्ति स्वयं एक शिक्षक ही तो होता है। वो समाज को केवल साक्षर नहीं बल्कि नैतिक यानी कि मॉरल बनाता है और एक शिक्षक की दी हुई सीख पीढ़ियों तक सफर करती है। दोस्तों, शिक्षक यानी कि माता पिता वो मोमबत्ती है जो खुद जलकर दूसरों की दुनिया में रोशनी भरते हैं। और आज के समय में घर पर दी जाने वाली शिक्षा ही उन्नत का रास्ता होती है। घर पर दी जाने वाली शिक्षा ही उन्नत का रास्ता होती है, ये बात हमें और आपको क्या पूरे समाज को समझने की आवश्यकता है। उस समाज को जिस समाज में हम अपने भविष्य को गढ़ने की बारे में सोचते हैं। स्कूल किताबी ज्ञान देता है लेकिन संस्कार घर से ही मिलते हैं। बच्चा वही सीखता है जो अपने माता पिता को करते हुए देखता है। आपका बच्चा व्यवहार का दर्पण को देखता है, आपके व्यवहार के दर्पण को। अगर घर का परिवेश उन्नत है तो बाहरी दुनिया की बुराइयां बच्चे को प्रभावित कभी नहीं कर पाती है। स्कूली शिक्षा कुछ सालों तक की होती है पर घर की जो सीख होती है वो नींव भर होकर उसके जीवन भर साथ रहती है। एक अभिभावक एक शिक्षक से ज्यादा अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, एक परिवेश से सिखा सकते हैं। आपको चाहिए कि एक बच्चे के साथ उसके परिवेश को शिक्षित बनाए ताकि अपने परिवार से शिक्षा पाकर वो अपने परिवेश को उन्नत बनाए। दोस्तों, सुन रहे थे आप हिंदी वार्ता।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का सचेता चैनल। कार्यक्रम है अभी गुल गुलशन का और लेकर हाजिर हूं मैं रिंकू। दोस्तों मिट्टी से जो भी सोना बना दे वो अपना हुनर रखते हैं, अंधेरे में जो चिराग जला दे वो अपना नजर रखते हैं। खुशनसीब है हम कि आप जैसा हमको रहनुमा मिला है, जो हर कांटे को गुलशन बना दे वो भी असर रखते हैं। यहाँ दोस्तों ये गुल गुलशन का कार्यक्रम है और हम इस खूबसूरत महफिल में आप सबके सामने आज यहाँ सामने हूँ और आपसे एक खास गुजारिश है कि इस गुल गुलशन के कार्यक्रम में आप अपने आप को खुद को यहाँ पर हमारे साथ गुफ्तगू करवाइए, चाय पीजिए और मजा लीजिए इन गीतों का। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम गुलगुलशन की नुसरत फतेह अली खान साहब और राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में। ये गीत सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, कहीं पर कव्वालियों की गुनगुनाहट है और कहीं पर गजल का। खुदा से ये मिलाने वाले इस तरह की नज़ाकत और जज्बातों को अल्फाज देते हैं, ये ऐसे कव्वाली और गजल होते हैं। वैसे तो एक शायर ने कहा है कि महफिल में रंगत उन गीतों से आती है जो रूह को छूकर दिलों को

महकाती है। कहीं कवाली का जोश होता है, कहीं गजल की नजाकत होती है। ये गुलगुलशन की ही महफिल है जो हर रंग को सजाती है। आइए वडाली ब्रदर्स और साथ में जसपिंदर नरूला की आवाज में सुनते हैं फिल्म पिंजर से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, गुलशन की हर कली आज गुनगुनाएगी, सुरों की ये लहर सीधे आपके दिल तक जाएगी। गुल का साथ हो और संगीत की महफिल हो तो यकीन मानिए कायनात भी थम जाएगी। दोस्तों, आपकी हथेली और रूह की पकार, ये पुकार और हथेली दोनों ही तो, ये तालियों की गड़गड़ाहट से जब ये दोनों मिलते हैं तो कवाली बनती है। दोस्तों, ऐसे ही कवाली के साथ ईश्वर के साथ हम रूबरू होते हैं, लेकिन साथ ही अपनी जड़ों की ओर चलिए लौटते हैं और वो धुन सुनते हैं जो हमारी मिट्टी और संस्कृति को जोड़ती है। पेश है आपकी दिलकश लोकगीत की पिरों में जसपिंदर नरूला और संजीवनी की आवाज से सजी हुई ये गीत, लेकिन साथ में एक और गीत जसपिंदर नरूला की जो लोकगीत है कश्मीर का, आइए सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, ये मिट्टी की सौंधी खुशबू का एहसास ही दिलाते हैं। ये लोकगीत ही है जो अपनों से अपनों को मिलाते हैं। ये दोस्तों ना इसमें दिखावट है ना कोई बनावट है, ये तो सीधे दिल से निकलते हैं और रूह में समा जाते हैं। आप सुन रहे थे जसविंदर नरूला को फिल्म मिशन और कश्मीर से। लेकिन दोस्तों एक और बात बताऊं कि इन लोकगीतों में पुरखों की विरासत और माटी की पुकार, इस लोक संगीत ही हमारी संस्कृति का है श्रृंगार। दोस्तों आइए सुनते हैं जसविंदर नरूला और साथ में संजीवनी है फिल्म करीब से, क्योंकि मंजीरा की खनक और ढोलक की है थाप, लोक संगीत है हर दिल का आलाप।

जी हाँ दोस्तों, गांव की गलियां और खेतों की वो हरियाली के साथ आपके ढोलक की थाप और लोकगीत की टोली जब आती है तो ये महज एक केवल सुर नहीं रहता बल्कि आपकी संस्कृति और आपकी विरासत का आईना को दिखा जाती है। इनमें बसी हमारी संस्कृति और सच्ची कहानियां, इन गीतों के पीछे छुपा रहस्य है जो आज हम आपके सामने गुल गुलशन के कार्यक्रम में रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी संस्कृति से

हम आपको जोड़े रखे। लेकिन दोस्तों, समय की थाप ये बता रही है कि गुलगुलशन का कार्यक्रम अब शायद अभी इस वक्त के लिए मुझे जाना होगा। इजाजत चाहूंगी, लेकिन छोड़े जाती हूं आपको श्रेया घोषाल और जसविंदर अरोड़ा की आवाज में फिल्म देवदास से ये गीत। सुनते रहिए और रिंकू को गुलगुलशन कार्यक्रम से अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।

की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा। सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम

0: विलन का परिचय दिखाया है। यह बहुत ही सराहनीय राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरलम में आता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. He arrived in UAE this morning on the first leg of his 5-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome. Both the leaders discussed energy cooperation and bilateral trade high amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable. After concluding his UAE visit,

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पर दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल और अभी कार्यक्रम है दर्पण का, जिसपे हाजिर हूँ मैं रिंकू।

सबसे पहले दर्पण में एक नजर। एक नजर में आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और आज जयंती है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो एक नजर में आज हम इन्हीं दो विषयों पर बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के ऊपर। दोस्तों, हर साल 15 मई को पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। आज शुक्रवार 15 मई 2026 को यह दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। 2026 की थीम है परिवार असमानताएं और बच्चों का कल्याण, यानी कि इसकी उद्देश्य के साथ कि परिवार को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिक समस्याओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। इसकी शुरुआत और इतिहास क्या है, इसे भी तो जानना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने सन 1993 में इस दिन को मनाने का संकल्प किया था। पहली बार आधिकारिक तौर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई 1994 को मनाया गया। इसका महत्व यह है कि परिवार को समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है, जो बच्चों के संस्कार और विकास की नींव है। और इस परिवार दिवस के प्रतीक के रूप में अगर हम बात करें तो एक हरे रंग का घेरा जिसके बीच में एक लाल घर और दिल बना होता है। ये चिन्ह एक संदेश है। ये प्रतीक सुरक्षित और प्यार भरे पारिवारिक वातावरण को दर्शाता है।

अब आइए दोस्तों बात करते हैं एक नजर में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, जिनकी आज जयंती है। दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनका आज जन्म है, दिवस है आज 15 मई को हम उनका जयंती मनाते हैं। आज यानी शुक्रवार 15 मई 2026 को उनकी 162वीं जयंती है। हिंदी के युग प्रवर्तक, आधुनिक हिंदी साहित्य के दूसरे काल यानी कि 1893 से लेकर 1918 तक को उनके सम्मान में द्विवेदी युग कहा जाता है। उन्होंने सन 1903 से लेकर 1920 तक प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया था और हिंदी भाषा को एक नया स्वरूप दिया था। उन्होंने खड़ी बोली को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और व्यवस्थित किया, जिससे वो साहित्य की मुख्य भाषा बन गई थी। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद जैसे महान लेखकों को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन दिया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 15 मई सन 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में उनका जन्म हुआ। साहित्य में आने से पहले उन्होंने भारतीय रेलवे में कार्य किया था। हिंदी साहित्य के प्रति उनके योगदान के लिए उन्होंने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। अक्सर लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जयंती 19 अगस्त को मनाई जाती है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अनगिनत कार्य किए उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के वो अनुशासन पर्व है जिन्होंने हिंदी भाषा को परिष्कृत कर उसे एक मजबूत आधार दिया था। उनके बारे में कुछ खास और गहराई वाली बातें यह है कि द्विवेदी जी से पहले हिंदी व्याकरण में काफी कमियां थी, लेकिन उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से लेखकों की वर्तनी और व्याकरण की गलतियां को सुधारी। उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि कविता सिर्फ ब्रज भाषा में नहीं बल्कि खड़ी बोली जो कि आज हम बोलते हैं उसमें भी होनी चाहिए। उन्होंने केवल खुद ही नहीं लिखा बल्कि लेखकों को एक पूरी पीढ़ी तैयार करने के लिए भी बद्ध किया। मैथिली शरण गुप्त जिसे बहुत सारे और भी लेखक थे उनके जैसे दिग्गज जिन्हें अपना गुरु मान बैठे थे।

द्विवेदी जी ने साहित्य के केंद्र में शिव श्रृंगार या राज रानी को ही रखा नहीं, बल्कि साहित्य को राष्ट्रीय निर्माण का जरिया भी बनाया। छुआछूत, दहेज और नारी शिक्षा जैसे विषय पर उन्होंने लेख लिखवाए। उनका मानना था कि कविता ऐसी हो जो आम आदमी को भी समझ में आए, और उन्होंने यही कार्य किया। साहित्य में आने से पहले वे रेलवे में तार बाबू यानी कि टेलीग्राफिस्ट थे। उन्होंने अपने स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण 200 रुपये की अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दी थी, और उन्होंने संस्कृत के महान काव्यों जैसे कुमार संभव और अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया ताकि हिंदी भाषी लोग विश्व साहित्य को समझ सके। उन्होंने अर्थशास्त्र यानी कि संपत्ति शास्त्र से लेकर विज्ञान तक हर विषय पर हिंदी में लिखने को प्रोत्साहित किया। और अगर हम बात करें कि एक बार जब एक बड़े कवि ने उनकी सुधारों पर आपत्ति जताई थी, तो उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा था, हिंदी किसी की जागीर नहीं है, यह जनता की भाषा है और इसे सुधारना मेरा कर्तव्य है। और सरस्वती पत्रिका के साथ उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचनाओं को हिंदी में खूब सुधारा और साथ ही उन्हें खूब उबारा। इसलिए आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग के काल के नाम से भी जानते हैं।

दोस्तों दर्पण में अब एक नजर के बाद हम बात करेंगे विधि विधान और समाधान, जिसमें अब हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्ट के विषय में। दोस्तों भारत में साइबर सुरक्षा अधिनियम यानी कि साइबर सिक्योरिटी एक्ट नाम का कोई एकल कानून नहीं है, बल्कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम 2000 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी कि डीबीटीबी अधिनियम 2023 का उपयोग किया जाता है। यहां साइबर सुरक्षा की विधि यानी कि लॉ विधान और समाधान का हम विस्तृत में आपको विवरण देंगे, आइए सुनते हैं। भारत में साइबर सुरक्षा का कानूनी ढांचा मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर टिका है। एक सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, दूसरा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी कि डीबीटीबी यानी कि अधिनियम 2023 और तीसरा सीईआरटी, इनके नियम। आइए जानते हैं उन विधि विधानों को। तो पहले है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम 2000। यह भारत का प्राथमिक कानून है जो साइबर अपराधों से निपटाता है। धारा 66 यानी कि 66 कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ या हैकिंग के लिए सजा दी जाती है। धारा 66C और 66D पहचान की चोरी और धोखाधड़ी के लिए दंड है। धारा 67 अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर रोक लगाए जाने के लिए है। और धारा 69 राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सरकार को डेटा इंटरसेप्ट करने का अधिकार देता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी कि डीपीटीबी अधिनियम 2023, ये नया कानून डेटा की गोपनीयता पर केंद्रित है जो नवंबर 2025 से पूरी तरह से प्रभावी है। इसकी सहमति यह है कि कंपनियों को आपका डेटा इस्तेमाल करने से पहले स्पष्ट अनुमति लेनी होगी और डेटा फिडुशरी यानी कि डेटा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उस संस्था की होगी जो उसे इकट्ठा कर रही है। साथ ही इसका भारी जुर्माना भी है। डेटा लीक होने या सुरक्षा में चूक होने पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। और तीसरा नियम है सीईआरटी, इनके नियम, जो 2025 और 26 में अपडेट होने वाला है। सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए साइबर हमले की जानकारी 6 घंटे के भीतर सरकार सीईआरटी इन को देना अनिवार्य है। और अगर इस तरह के कई समान होते हैं तो इसका समाधान भी है। यदि आप किसी साइबर अपराध

आग का शिकार होते हैं या उससे बचना चाहते हैं तो ये समाधान को अपना सकते हैं। नंबर एक, तत्काल शिकायत करनी होगी यानी कि रिपोर्टिंग। पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज करें। हेल्पलाइन नंबर है नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। इसकी तकनीकी सुरक्षा उपाय ये है कि 2FA यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने सभी सोशल मीडिया और बैंक खातों पर टू स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखें। पासवर्ड हमेशा जटिल पासवर्ड अक्षर अंक और संकेत का मिश्रण इस्तेमाल करके बनाएं। सॉफ्टवेयर अपडेट अपने फोन और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें क्योंकि इनमें नए सिक्योरिटी पैच होते हैं। इसका वित्तीय समाधान यानी कि साइबर इंश्योरेंस, आजकल कई बैंक और बीमा कंपनियां साइबर इंश्योरेंस देती है जो ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई भी करती है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही अपना OTP किसी को बताएं। बैंक कभी भी फोन पर आपकी निजी जानकारी आपसे नहीं मांगा करते। क्या आपको इस साइबर विशेष अपराध पर खुद भी सतर्क रहने की आवश्यकता है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विधि विधान और समाधान, जिसमें हम बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी एक्ट के विषय में। अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत, और इस गीत के साथ रिंकू को भी आपसे रूबरू होने का इजाजत देना पड़ेगा, क्योंकि इस गीतों में हम वो चीजों को ढूंढते हैं जो आपके समक्ष हो। तो आइए देरी नहीं करते हैं और सुनते हैं जसपिंदर नरुला की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे जसपिंदर नरूला को फिल्म आ अब लौट चले से। लेकिन इसके साथ गीत के बोल लिखे थे समीर ने, संगीत से सजाया था नदीम और श्रवण ने। दोस्तों ये कार्यक्रम है दर्पण का और अभी फिल्मी गीत का सफर जारी है। आइए सुनते हैं एक प्यार भरा दर्द भरा गीत उसके साथ ही, लेकिन इससे पहले लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में एक मीठा गीत।

जी हाँ दोस्तों, दर्पण का कार्यक्रम चल रहा है। फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में। अभी आपने सुना फिल्म राम अवतार से। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से सजा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में 7:55 हो चुके हैं और अभी अलविदा लेने का समय आ चुका है। अगली बार आपसे फिल्म मुलाकात होगी, लेकिन सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अभिमान से ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं आपको बता दूं मजरू सुल्तानपुरी ने और एसडी बर्मन ने संगीत दिया है। आइए सुनते हैं ये गीत और रिंकू को इसी गीत के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: আকাশবাণী কলকাতা, অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে, মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে। এখন শুনবেন সমাচার সন্ধ্যা।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে লভলিন নিগম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी करना

0: with a defense. और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ पक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
6: अंडर द 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत

पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल

0: माहे दक्षिणांतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन के फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Almost free, open or safe ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
2: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering

0: Affairs. Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we will be discussing about the Prime Minister's visit to five nations, strengthening India's global partnerships. The first leg of the visit began in Abu Dhabi, where in a special gesture, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan personally received the Prime Minister upon his arrival, a reflection of the deep and enduring bonds of friendship between India and the UAE. Prime Minister Modi extended gratitude to President Nahyan for the warm reception, describing the UAE as his second home. Listen in.
1: आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने स्कोर किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां थी, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है।
0: The two sides also exchanged views on developments in West Asia and other major global issues. The visit witnessed several significant outcomes, with seven major agreements and arrangements announced. These include an MOU on strategic collaboration between Indian Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company. So to discuss the significance of these outcomes and what they mean for the future of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, we have with us two eminent guests, Professor Harsh V. Pant, Vice President, Observer Research Foundation, and Professor Anshu Joshi, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University. Thank you to both our guests for joining us on this program on Akashvani.
2: Let me begin.
0: Before we proceed further into the discussion, let's listen to this special interview of Indian Ambassador to the UAE on the significance

0: talking about it in a certain context when it came to UAE. But if you think about Europe, India is attempting to diversify its suppliers, its technology partnerships, its green transition imperatives. So cooperation on renewables, green hydrogen, clean technologies is going to be figuring out a lot when Prime Minister goes from Netherlands all the way to Nordic countries. So I think in that sense, energy, economy, and then tech. India's growing emphasis on emerging tech and innovation ecosystems, semiconductors, AI, resilient supply chains, defense tech, startup collaborations, these are all critical now for India's external partnerships. So now from a traditional focus on political solidarity to a far more transactional and capability-oriented engagement with major economies is what is defining India's European outreach. And I think that is what we are going to see in country after country the Prime Minister goes, whether it is Netherlands, whether then after Sweden, Norway, Italy. I think this is how we are going to see the outcome from that. We should assess the outcome from that perspective, that India is no longer content with symbolic diplomacy. It is seeking tangible gains, whether it's technology access, energy resilience, investment flows, and a strategic influence. And at a time when you have geopolitical fragmentation, India, what it is trying to do is basically leverage its growing economic weight to emerge as a pivotal actor in these two critical geographies where India has traditionally not been that important. But today, certainly, India's economic weight is giving it such a heft that it can have a bilateral partnership with the UAE and it can have a bilateral engagement with the Nordics. So we'll have the India-Nordic summit happen next week. So it is, I think, in that sense, a transformative moment in India's ties with both West Asia and Europe.
1: Before we proceed further into the discussion, focusing on the second leg of the Prime Minister's visit, which is to the Netherlands, here's an interview of the Indian Ambassador to the Netherlands, Kumar Tuhin, who described the Prime Minister's visit to the country as a significant one while speaking exclusively to Akashwani correspondent Sushrut Sharma. Aiye sunte hain iske pramukh ansh.
2: प्रधानमंत्री तीन दिवसीय यात्रा पर नीदरलैंड आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के राजदूत श्री कुमार तुहिन सर। सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट?
3: यह यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे संबंध नीदरलैंड से बहुत मजबूत हैं। लेकिन यह एक ऐसा मौका होगा जबकि दोनों देशों के नेता नीदरलैंड में नई सरकार बनने के बाद पहली बार सामने सामने मिल रहे होंगे, तो इस मौके पर आज तक जो हमारी प्रगति हुई है उसको रिव्यू करना, हमारी जो प्रोग्रेस है उनको कंसोलिडेट करना और आगे एक नई दिशा देने का एक बहुत बढ़िया मौका है।
2: सर, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों पे बात करेंगे और उनको और एक्सप्लोर करेंगे?
3: पहले से जो हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, और जो पानी का क्षेत्र है और कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तो पहले से ही बहुत कुछ काम हो रहा है। हम ये आशा करते हैं कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को मौका मिलेगा कि जो नए इमर्जिंग जो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है या क्लीन एनर्जी का क्षेत्र है, मैरिटाइम कोऑपरेशन का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी हमारी आज की प्रगति को रिव्यू करना और हमें फिर एक नई दिशा और नए निर्देश देने का एक अवसर।
2: सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नीदरलैंड एक पायनियर है, उस क्षेत्र में हमारे यहाँ पे R&D के फील्ड में कुछ आरंभ भी हो रहा है, तो क्या आगे हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं एक्सप्लोर करते हैं?
3: जी, नीदरलैंड्स विश्व की सबसे प्रख्यात सेमीकंडक्टर कंपनियों की जगह है और पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की जो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी बढ़ाने का काफी बड़ा काम है, तो इसलिए ये कम्प्लीमेंट्री एक तरह के हम लोगों का स्ट्रेंथ है और हमारी भूमिकाएं हैं, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि डच कंपनियां जो कि अभी भारत में मौजूद हैं लेकिन उनकी और बढ़ने की अभी आशा है और पोटेंशियल है, उसको हम लोग एक नए स्तर पर लेके जा पाएंगे।
2: सर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी आजकल बहुत बात हो रही है, नीदरलैंड इसमें एक पायनियर है लेकिन इंडिया भी इसमें एक उभरता हुआ लीडर नजर आ रहा है। सर, उस क्षेत्र में से कौन से फील्ड्स हैं जहां पे ये हमको बहुत बेनिफिट करेगा? हम सुन रहे हैं कि कुछ क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर में भी ग्रीन हाइड्रोजन का एक रोल है अदर देन एनर्जी सिक्योरिटी।
3: जी, सो नीदरलैंड्स क्लाइमेट के एरिया में, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के इलाके में काफी बढ़िया करते हैं। हमारे देश में भी आपको पता है कि क्लाइमेट, वातावरण और साथ साथ कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डच कंपनियों के पास जो उनकी जो तकनीक है, उनके पास जो आधुनिक तकनीक है, उनका जो ज्ञान है, उनको हम लोग भारतीय कंपनियों के साथ जोड़ सकें, यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को हम भारत के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, हमारे जो अनुसंधान संस्थान, उनसे जोड़ सकें, ताकि हम दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअली जो बेनिफिशियल एक तरह का जो रिलेशन है उसको हम लोग ले पाए।
2: सर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल एनर्जी पे भी नीदरलैंड जाना जाता है, उस क्षेत्र में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक बीजिंग वार्ता की सराहना की और चीन अमेरिका सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हाल ही में हमलों की कड़ी निंदा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरेब्रस चिप भेंट की। ये उन्नत चिप्स भारत की आगामी 8 एक्स फ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को शक्ति प्रदान करेंगी जिससे

0: भारत के AI मिशन को बढ़ावा मिलेगा और देश की अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट

0: भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और UAE के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में UAE में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और UAE ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
2: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का UAE का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के CEO से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में कहा गया कि सदस्य देशों ने एक न्यायसंगत, वैध, लोकतांत्रिक और जवाबदेह अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय प्रणाली को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान भी किया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य और सहयोगी देश की स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की बहुत सराहना और समर्थन किया।
4: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
5: अंडर द 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में हुई वार्ता को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया। श्री ट्रंप की 3 दिन की चीन यात्रा आज समाप्त हो गई। दोनों नेताओं ने कई दौर की वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार, ईरान विवाद और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। शी जिनफिंग ने कहा कि दोनों पक्ष स्थिर आर्थिक संबंध बनाए रखने, सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर समन्वय मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप ने भी यात्रा को बेहद सफल बताया और कहा कि वे शी जिनफिंग की व्हाइट हाउस में मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि ताइवान, दुर्लभ धातुओं के निर्यात या सेमीकंडक्टर व्यापार पर कोई सहमति नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्षी ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज जल डब्लू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 24 लोग मारे गए और 45 घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि हमलों में घरों, एक स्कूल और अन्य नागरिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने मुख्य रूप से कीव को निशाना बनाकर 675

0: ड्रोन और 56 मिसाइलें दागी। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया है। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक बीजिंग वार्ता की सराहना की और चीन अमेरिका सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I am Purnima Samant Kadakoti with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates India's support for safe and uninterrupted navigation through the Strait of Hormuz to ensure regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump hail historic Beijing talks, agree to deepen China-US cooperation. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at the Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Almost free, open or safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathmikta hai. Is vision mein antarrashtriya kanunon ka palan avashyak hai. Brother, Bharat har paristhiti mein UAE ke sath kandhe se kandha milakar
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his 5-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. More from our West Asia correspondent.
3: The talks yielded a wide range of agreements on energy. India Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company signed a strategic collaboration agreement to raise UAE's participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels. A long-term LPG supply arrangement between Indian Oil Corporation and ADNOC was also concluded. On defense, the two sides signed a framework for a strategic defense partnership covering industrial collaboration, maritime security, cyber defense and information exchange. $5 billion in UAE investment to India was announced. $3 billion from the Emirates New Development Bank into RBL Bank, 1 billion from the Abu Dhabi Investment Authority into priority infrastructure projects, and 1 billion from the International Holding Company into Sammaan Capital. The two countries also signed agreements to establish a ship repair cluster at Vadnagar, a skill development framework for the maritime

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हुरमुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024

0: में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Almost free, open or safe banaye rakha. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a report of a media house on cess or tax or surcharge on foreign travel. He said the report is totally

0: कभी तो हंसाए।
1: এবারে শিল্পী মুকেশ, আনন্দ ছায়াছবির গান শুনছেন।